0: ड्यूरांट के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांट। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
1: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

Hello everyone, how are you all doing today? I am so doing absolutely fine. This is Ippy the Hippie back in the house at Funasia Radio 104.9 FM. And you are listening to my show, An Evening in Dallas. भाई आप लोगों का वीकेंड कैसा गया, मंडे कैसा गया, ट्यूसडे कैसा गया, क्योंकि वेंसडे आ गया है. वी आर इन मिड वीक एंड देन मतलब बस दो दिन और है यार हफ्ते के लिए, उसके बाद फिर से वीकेंड आने वाला है. आपने अपने वीकेंड के प्लान्स बनाए कि नहीं बनाए? मैंने तो बना लिए. सॉरी येस्टरडे आई वॉज आउट बिकॉज आई वॉज सपोज टू बी डूइंग ए रिकॉर्डिंग, जिसकी वजह से आई वॉज आउट. अगर आप मुझे मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट वरी, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं गई. आई एम स्टिल हियर एंड एंटरटेनिंग यू ऑल द वे थ्रू आउट टुनाइट, ऑल द वे टिल 10 PM टुनाइट. So stay tuned because we're going to have some fun and we're going to talk and then we're going to play lots of music and we're going to play our giveaway game. So stick around. Here we go.

0: बाहू।
1: सूरज की बाहें तो थोड़ा वेट भी कर सकती है, लेकिन गाइस आपने सूरज की बाहों में भी होने के लिए थोड़े तो सपने देखने पड़ते हैं ना। तो अगर आपके भी वैसे ही कुछ सपने हैं लाइक बिल्डिंग अ हाउस एंड ऑल ऑफ दैट, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट ड्रीम होम मॉर्गेज। योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज। सिंस 1998 दे हैव हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इन टू रियालिटी विद ए पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशन एंड ए स्मूद एंड स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट एब्सोल्यूटली परफेक्ट टेलर मेड लोन ऑप्शन फॉर यू। चाहे आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, अपग्रेड करें या रिफाइनेंस करें, जस्ट गिव देम अ कॉल। यू नेवर नो व्हाट यू कैन गेट आउट ऑफ इट, राइट? योर होम ओनरशिप शुड स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस एंड दीज गाइज कैन गिव यू दैट कॉन्फिडेंस। ओके, सो कॉल 972-245-5626 और विजिट ड्रीम होम मॉर्गेज डॉट कॉम फॉर मोर डिटेल्स। मेकिंग ड्रीम्स होम ड्रीम होम्स हैपन। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास बहुत ही अमेजिंग सा प्लान है। वी हैव सम रियली कूल ट्यून्स, लॉट्स लॉट्स ऑफ म्यूजिक, एंड देन वी ऑल्सो हैव सम अमेजिंग गेम्स दैट वी आर गोइंग टू प्ले, एंड देन आई हैव सम थिंग्स दैट आई ऑलवेज शेयर विद यू, वेदर दैट्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स और जस्ट जनरल स्टफ विच इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड विच मे नॉट बी देयर इन योर रेगुलर न्यूज़, बट इट्स स्टिल काइंड ऑफ यू नो फन न्यूज़ टू कैच अप ऑन। तो ये गाना सुनते हैं एंड देन वी विल कम बैक एंड टॉक सम मोर।

भाई जैसे बोलते नहीं है वो सेइंग, एक आदमी का दिल उसके पेट से होते हुए जाता है, वैसे ही है ना कोई सेइंग, लाइक यू नो इन ऑर्डर टू रीच अ मैंस हार्ट यू हैव टू फीड हिज ईगो फर्स्ट. ईगो तो नहीं, खैर फीड हिज स्टमक ओनली, स्टमक इज एन ईगो, सेम थिंग. ओके नॉट रियली बट यू गेट माई जेस्ट राइट. तो वैसे ही औरतों का दिल जीतने के लिए ये सब गाने वाने ना गा के ना बॉलीवुड हीरो की तरह, चलो ठीक है वो भी चलता है, लेकिन यू नो कम ऑन गाइज, यू नीड टू अप योर गेम अ लिटल बिट. तो जैसे लड़कों का दिल जाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द स्टमक एंड यू नो दे से दैट फीड द गाय रियली नाइसली, लड़कियों का दिल जीतने के लिए आपको उनको यू हैव टू लाइक कवर देम इन ज्वेलरी एंड स्टफ लाइक दैट, बिकॉज यू नो एवरी गर्ल लाइक्स डायमंड्स. वो नहीं सेइंग आपने सुनी, डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, दैट्स राइट गाइज. तो अगर आपको यू नो किसी लड़की का दिल विल जीतना है, यू नीड टू हेड डाउन टू श्री कृष्णा ज्वेलर्स, बिकॉज ज्वेलरी इज मोर देन एन एक्सेसरी, दैट इज राइट. लड़की का दिल भी जीत सकते हैं आप. इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी, फ्रॉम क्लासिक गोल्ड डिजाइंस टू स्पार्कलिंग हीरे मोती डायमंड्स, एंड फ्रॉम इंट्रिकेट कुंदन टू स्टनिंग पोल की कलेक्शंस, एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइफ स्पेशल मोमेंट्स. अभी दे हैव ओपन अ न्यू लोकेशन इन फ्रिस्को, स्वीट 220-13145 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को, श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टिंग फाइन ज्वेलरी एंड चेरिश मोमेंट्स सिंस 1967. दैट इज राइट गाइज, दे नो द गेम सिंस 1967. भाई लड़की को पटाना है तो भाई थोड़ा गहने शहने दो, ये क्या होता है, ऐसे ही थोड़े ना फूल देंगे कुछ भी एक्सपेक्ट करोगे, ऐसे नहीं होता. We have high standards.

0: कॉमिक्स हमने सब पढ़ी थी, मूवी भी आई थी कुछ सालों पहले. आई वॉजंट अ बिग फैन ऑफ द मूवी.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
3: जिंदगी एक रंगमंच है
4: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सस टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
5: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com.
2: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies night and college nights bhi.
5: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
6: Hey, tumne kabhi insurance liya?
7: Liya.
6: Kabhi policy samajh bhi aaya?
7: Nahi aaya.
6: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
8: Visit www.senadainc.com today.
9: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
10: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
5: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
11: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा.
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
13: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
14: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
15: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
16: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad. Register free now at meditation.funasia.net.

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल।
1: भाई देसियों का रेडियो, परदेसियों का रेडियो, हम सबका रेडियो है परदेसी, परदेसी जाना नहीं। भाई कितना कितना लेजेंडरी गाना था ना, याद है आपको जब वो गाना रिलीज हुआ था, इट बिकेम लाइक सुपर सुपर हिट। हमेशा टीवी खोलते ही वही गाना बजता था विदाउट फेल। तो गाइज आज हमारे पास बहुत मज़ेदार चीज़ें होने वाली है। आई एम गोना शेयर सम अमेजिंग न्यूज़, लेकिन विल डू ऑल ऑफ दैट आफ्टर 8 PM। अभी तक तो सिर्फ गाने ही सुन रहे हैं, तो लेट्स गेट इन टू द जोन ऑफ इट। मैंने कल पता है क्या किया, मैंने आई हैड अ रिकॉर्डिंग सेशन। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू गाइज दैट आई एम रिकॉर्डिंग माई एल्बम। तो येस इट इज़ ए जैज एल्बम, आई नो देर आर नॉट अ लॉट ऑफ जैज लिसनर्स ओवर हियर, हाउएवर अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर आई लेट यू नो व्हेन इट्स आउट, बट राइट नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ दैट, क्योंकि मेरी क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही है। जिंदगी में ना दो चीज़ें होती है, एक तो आप काम काम के लिए करते हो और एक काम खुशी के लिए करते हो, दो टाइप के काम होते हैं, वही होता है। ये वाला जो मेरा म्यूज़िक वाला साइड है वो मैं अपने काम खुशी के लिए करती हूँ, और जो कई बार मैं रेडियो पे भी आती हूँ टेक्निकली वो भी मैं काम खुशी के लिए करती हूँ, क्योंकि अगर कोई खुशी नहीं मिलेगी तो काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू बी हैप्पी विद वॉट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ, एंड वेदर यू फाइंड दैट हैप्पीनेस इन मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी और जस्ट बींग हैप्पी बाई जस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग द वर्क, देन यू विल नेवर बी अनहैप्पी। ऑफ कोर्स इफ यू आर हैप्पी यू विल नेवर बी अनहैप्पी। तो एनीवेज गाइज आगे बढ़ते हुए लिसन टू दिस नेक्स्ट ट्यून।

तेरा नहीं मैं, तेरा नहीं मैं लवर लवर। भाई आप मेरे लवर तो है नहीं, मैं भी आपकी लवर नहीं हूँ, लेकिन हमारा लव तो है ना, आरजे एंड ऑडियंस का। एब्सोल्युटली टोटली गेट इट। तो फ्रेंड्स, बाय द वे, लव से याद आया, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, टोटली अनरिलेटेड, बट यू नो व्हाट भाई, आपके लवर भी आपका ध्यान रखेंगे, मतलब पैशनेटली एकदम, तो दैट्स व्हाई इट्स कंप्लीटली रिलेटेड। दे विल स्पेंड अ फुल 30 मिनट्स ऑन योर अपॉइंटमेंट, नॉट लाइक 5 मिनट 10 मिनट विद ऑल दी अदर गाइज, लाइक ऑल दी अदर गाइज, यू नो, ऑल दी अदर डॉक्टर्स, दे गोना स्पेंड अ फुल 30 मिनट्स ऑन योर अपॉइंटमेंट एट पैशन हेल्थ केयर। यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर लाइक फैमिली, फॉर यू, योर फैमिली एंड द हेल्थ ऑफ आवर कम्युनिटी। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल, एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स। अगर पार्टी शादी ज़्यादा कर ली या दारू शारू ज़्यादा पी ली, तो दिस इज द वे टू गो। एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसीज एंड सो मेनी मोर जेनेरिक टेस्टिंग एज वेल। इट्स ऑल अवेलेबल एट पैशन हेल्थ। स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे एट 214-666-6259। दैट इज राइट, 214-666-6259। योर हेल्थ इज अ देयर पैशन। ओके, तो ये गाना सुनते हैं एंड देन वी विल बी बैक एट 8:05। स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी गोना कम बैक विद आवर गिव अवे।

Guys, it is 7:56 on the clock, and this is still your host and dost and your bestie, baddie, everything, whatever you can say it. AP the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. So guys, अभी हम लोग थोड़ी देर में जाने वाले ब्रेक में और आज हम खेलेंगे अपना गिव अवे गेम. लेकिन हमारा गिव अवे गेम इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आर यूजुअल what it sounds like wala game. ठीक है, it's not going to be the copycat game where I'm gonna play a song and you have to guess the Hindi gana. नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा. ये बिल्कुल अलग टाइप का गाना होगा, तो वो आपको पता चलेगा कि कितने बजे होगा. वो 8:05 के करीब होगा, वो आपको पता चल जाएगा क्या गेम होगा. मैं आपको बताऊंगी, एक्चुअली मैं बता ही देती हूँ, इट्स कॉल्ड कम्प्लीट द डायलॉग. मैंने बीच में एक बार वो खेला था वो गेम, एंड आई थिंक इट वॉज क्वाइट आइकॉनिक. आई थिंक एवरी वन रियली एन्जॉयड इट. तो वी विल टेस्ट योर बॉलीवुड नॉलेज. आई विल गिव यू एक आधा अधूरा डायलॉग फ्रॉम ए रियली रियली फेमस बॉलीवुड मूवी, और आई एम श्योर आपको पता ही होगा. तो इसमें मतलब बहुत चांसेस है सबके जीतने के. यू डोंट हैव टू हैव एनी म्यूजिकल नॉलेज. All you need to do is love your Bollywood and watch your Bollywood and actually ratta maro some of the dialogues, okay? Kyunki aapko word to word, same to same, matching dialogue bolna padega. And agar ek do word bhi idhar udhar hua to darling aapko award nahi milega. Koi baat nahi, dusre wale ko mil jayega. Aap kal bhi khel sakte hain, theek hai? To without further ado, aap ye wala gana suniye. We will be right back around 8:05 with this giveaway.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिसोर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
0: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
0: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
10: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
0: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
10: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
11: तेरे प्यार में कर दिया दीवाना, उसका तो मुझे नहीं पता लेकिन फन पिज्जा किचन के टेस्टी टेस्टी पिज्जाज ने मुझे जरूर कर दिया है दीवाना. फन पिज्जा किचन हैज लॉन्च्ड ए ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप. और ये सिर्फ पिज्जा नहीं है गाइस, देयर आर फुल ऑन बर्स्ट ऑफ फ्लेवर इन योर माउथ from the fresh fiesta veggie to the fiery pollo loco seafood packed senior camarón and the loaded mucho macho pork. Every bite is bold, exciting and made to impress. Head over down to Fun Pizza Kitchen and taste the new obsession for yourself. New flavors, new obsession. For more details, visit funpizzakitchen.com. तो गाइस, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, 8:05 को हमारा होगा गिव अवे. आज हम गिव अवे थोड़ा सा चेंज करते हैं, जस्ट फॉर फन. आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, यू नो. मैं थोड़ा सा बोर हो गई हूँ. आई नीड सम चेंज इन माय लाइफ एंड आई एम श्योर यू ऑल नीड इट टू. तो व्हाट इज द गेम? द गेम इज कंप्लीट दिस आइकॉनिक डायलॉग. ठीक है, मैं आपको आधा डायलॉग बोलूंगी, आपको वर्ड टू वर्ड, सेम टू सेम मुझे पूरा डायलॉग बोलना है. ठीक है, तो आप क्या जीत सकते हैं, पहले ये तो मैं बता दूं. फन पिज्जा किचन, जिसके बारे में मैंने इतना अच्छा बोला, वहां से आपको $10 का पूरा गिफ्ट कार्ड मिलेगा. ठीक है, बाय आंसरिंग द क्वेश्चन. मेरा नंबर है 9722355555. तो रेडी है, लेट्स प्ले. ओके, so the dialogue is from this, of course, the most amazing movie. आपको भी पता है बाजीगर. और ये डायलॉग है, कभी कभी जीतने blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank कहते हैं. तो blank भरना है आपको, fill in the blanks हो गया basically. कभी कभी जीतने के लिए कुछ. एंड हमारा फर्स्ट डायलॉग के भी फर्स्ट कॉल आ गया. लेट्स गो आंसर दैट कॉल. ओह, कॉल कट भी गया, कोई बात नहीं, दूसरी कॉल आ गई. हाय, कैन यू हियर मी?
12: या, आई कैन हियर यू.
11: ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योर नेम एंड देन टेल मी द पूरा डायलॉग.
12: या, माय नेम इज आदिया. द डायलॉग इज कभी कभी जीतने के. या,
11: व्हाट इज योर नेम पूरा? आदिया.
12: आर्या मित्रा कौर.
11: आर्या. ओके, आर्या मित्रा कौर जी, गो फॉर इट.
12: कभी कभी जीतने के लिए हारना भी जरूरी पड़ता है.
11: उसके आगे?
12: और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं.
11: यू आर वेरी क्लोज, बट कुछ कुछ उसका ना ग्रामर, थोड़ा हिंदी का ग्रामर उधर उधर हो गया. अच्छा, थोड़ा उसको ठीक करो.
12: ट्राई करूँ क्या?
11: हाँ, गो फॉर इट. दोबारा ट्राई करो.
12: कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं.
11: वाह, शानदार प्रदर्शन, तालियां हो जाए आर्य मित्र कौर जी के लिए. एक जरा तालियां बजा दें हम लोग सब मिलके पूरे स्टूडियो में. तो आर्य जी, कांग्रेचुलेशंस, स्टे ऑन द लाइन. ठीक है, और मैं गाना बजाती हूँ, देन आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन एंड देन आई विल अपडेट यू ऑन हाउ टू रिडीम इट. ठीक है,
12: ठीक है.
11: Okay, great guys, enjoy the song and Arya ji, stay on the line.
12: Sure.

कई घंटिया बज गई, याददाश्त वापस आ गई शाहरुख खान की, दिल में उसके दर्दे डिस्को बज गया. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट अमेजिंग, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज एक्चुअली इज ओम शांति ओम. मतलब इतनी क्रिंज है ना, मतलब मुझे ना सबसे प्यार पता है किससे है, क्रिंज वाली मूवीज जो है ना जिसमें कोई सेंस नहीं बनता, लॉजिकली इट डज नॉट मेक सेंस एंड ऑल्सो इट विल नेवर बी रियल. तो आई लव दैट. बाय द वे आपको पता है I'm quite into all this woo-woo stuff, okay? Like, I'm really into this punarjanam and like spiritual soulmate connection वगैरह वगैरह. मैं तो सोचती हूँ कोई कोई मेरे पुराने पिछले जन्म का कोई आएगा, मतलब अभी तक तो कोई आया नहीं मेरी जिंदगी में, लेकिन आई एम होपिंग वन ऑफ दीज डेज मेरे कोई पुराना soulmate आ जाएगा बिल्कुल मेरे सामने एंड मेरी लाइफ वैसे ही एकदम सुंदर सुंदर हो जाएगी वैसे. कोई बात नहीं यार, सपने देख सकते हो, सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है? अब होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं, कोशिश जारी है. तो पुनर्जन्म से याद आया कि रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस बुक विच वॉज एक्चुअली रिकमेंडेड टू मी बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड इट्स कॉल्ड मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ओके? एंड हमें लगता है कि ठीक है ये पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट ना इज अ वेरी एशियन कॉन्सेप्ट, क्योंकि वी आर इन टू दैट काइंड ऑफ अ रिलीजन, राइट? हिंदुइज्म एंड वगैरह वगैरह. तो हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हम लोग कार्मा में विश्वास करते हैं, मतलब हम लोग वो कार्मिक डेट वगैरह वो सारी चीज़ों में हम लोग बिलीव करते हैं ज़्यादा, यू नो, मोर देन यू नो अमेरिकन क्रिश्चियंस. आई मीन वी आर मोर इन टू दैट काइंड ऑफ स्टफ, ओके? लेकिन हाउ एवर जो भी है, जो मैं कह रही थी, लेकिन आई केम अक्रॉस दिस बुक रिटन बाय दिस ऑथर कॉल्ड, अरे यार मुझे ऑथर का नाम नहीं आता, मैं अभी रिसर्च करके बताती हूँ. द बुक्स नेम इज कॉल्ड मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ठीक है? और दैट टॉक्स अबाउट दिस साइकोलॉजिस्ट हु इज ए टीचिंग प्रोफेसर बाय द वे एट UCLA, करेंटली टीचिंग, ठीक है? और ही गेट्स दिस पेशेंट जिसको ना ऐसी लाइक अनएक्सप्लेन्ड फियर्स है लाइफ की कुछ, मतलब उनको पानी से बड़ा डर लगता है. शी हैज़ अ ट्रबल रिलेशनशिप विद अ फादर, डैडी इशूज वगैरह वगैरह, एंड यू नो शी हैज़ नो रीजन टू एक्सप्लेन वाई दैट हैपेंड. इट्स नॉट लाइक यू नो शी हैड, हर फादर वॉज मिसिंग, ही वॉज देयर द होल टाइम, बट देन दे ऑलवेज हैड अ स्ट्रेन रिलेशनशिप. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू नो ऐसे कुछ कुछ, शी हैड दीज अनएक्सप्लेन्ड फियर्स. तो शी वेंट टू दिस डॉक्टर who is a psychologist and he is into hypnosis and hypnotizing and stuff like that. तो उन्हें बोला कि कई बार क्या होता है हमारी childhood की जो memories होती है वो repressed हो जाती है, तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, let's go track down your repressed memories from your childhood and then we will see कि maybe it's something that you have forgotten about. तो वो क्या होता है उसके बाद मैं आपको आके बताती हूँ, ठीक है? तब तक के लिए आप ये गाना सुनो, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी, बातें कम गाने ज़्यादा.

जो चौका उड़ते हुए जाए उसे छक्का कहते हैं। यार क्या डायलॉग मारा है, मतलब ये डायलॉग होता है, ऐसी होनी चाहिए डायलॉग राइटिंग, है ना? आप डू यू अग्री और नॉट? मैं हर बारी वो सुनती हूँ ना गाने के बीच में, मुझे इतनी जोर की हंसी आती है ना, मतलब इट्स सो आइकॉनिक। तो आगे बढ़ते हुए गाइस, आई वॉज टेलिंग अबाउट दैट बुक दैट आई रिसेंटली रेड। तो उसमें पता क्या होता है, सो बेसिकली दिस एब्सोल्युटली दिस गर्ल कॉल्ड कैथरीन, शी इज़ अमेरिकन एंड शी इज़ हैड दीज लाइक अ लॉट ऑफ दीज इशूज़, एंड शी इज़ कैथलिक, जो मतलब क्रिश्चियनिटी में पुनर्जन्म वगैरह नहीं मानते हैं एज सच। तो वो जाती है इस डॉक्टर के पास एंड शी टेल्स हिम लाइक, डूड आई हैव ऑल दीज प्रॉब्लम्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, थेरेपाइज मी। तो दिस डॉक्टर बोलता है, देखो भाई मेरा थेरेपी का सोल्यूशन तो यही होता है कि हम हिप्नोसिस करते हैं, तो तुम आओ हम हिप्नोसिस करेंगे, तुम्हारी चाइल्डहुड मेमोरीज में जाएंगे, वी विल फाइंड आउट व्हाट्स व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। तो कह रही है चलो ठीक है। तो वो पहली बार अपनी मेमोरी में गई, मतलब ऐसे हिप्नोसिस में गई, एंड देन शी वेंट बैक इन टू हर चाइल्डहुड मेमोरी। फिर उन्होंने कुछ कुछ ढूंढा, फिर अचानक से मैडम पता नहीं कहाँ से शी वेंट बैक इन टू वन ऑफ आर पास्ट लाइफ्स। फिर कहती है कि आई वॉज सम काइंड ऑफ अ स्लेव गर्ल, इजिप्शियन स्लेव और जो भी है, शी वॉज लाइक द क्वीन्स यू नो हेल्पर और जो भी, ऐसे करके ना ऐसे धीरे धीरे करके वो पूरी बुक में मैंने जैसे पढ़ा, एंड अपेरेंटली इट्स अ ट्रू अकाउंट बिकॉज आई मीन ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड ही इज़ करंटली अ प्रोफेसर, सो आई एम अज्यूमिंग ही इज़ नॉट गोना राइट ऑल दिस फेक स्टोरीज। आई एम होपिंग इट्स ऑल ट्रू बिकॉज इट वॉज डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड। तो शी गोज़ बैक एंड देन शी गोज़ बैक इन टू 65 ऑफ हर पास्ट लाइफ, 65 लाइफ, 7 जन्म नहीं, 7 जन्म तो चले भी गए, 65 जन्म हो गए यहाँ पे उसके। मुझे बड़ा मज़ा आया बुक पढ़ के, एंड सम हाउ एवरी टाइम शी वेंट बैक इन टू हर पास्ट लाइफ दे फिगर्ड आउट कि सम हाउ एवरी टाइम शी वेंट बैक इन टू हर पास्ट लाइफ शी ऑलवेज डाइड ईदर बाय ड्राउनिंग और बाय फ्लडिंग और सम काइंड ऑफ शी यू नो हर शिप सैंक, वन टाइम शी वॉज अ सेलर बॉय और उसकी शिप शिप रैक हो गया और शिप डूब गई, ऐसे कर ना उसकी हमेशा से पानी से डेथ हुई है वियर्डली, ठीक है? तो दैट इज़ वाई शी हैज़ दिस इनएक्सप्लिकेबल फियर ऑफ वाटर, लाइक बहुत ही डरती है वो पानी से। तो देन द डॉक्टर वॉज लाइक, डूड दिस इज़ वॉट योर इश्यू इज़। तो उसको जैसे ही वो पता चला, कहती ओ आई डोंट हैव एनी मोर फियर ऑफ वाटर नाउ, नाउ आई नो बिकॉज नाउ आई जस्ट हैव टू बी केयरफुल। आई मीन आई डोंट, दैट्स नॉट वॉट हैपन, बट दैट्स जस्ट मी काइंड ऑफ एग्जैजरेटिंग। हाउ एवर इफ यू डिड लाइक इट देन यू शुड गो चेक आउट दैट बुक, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। एंड क्योंकि हम ओम शांति ओम के बारे में बात करते हैं, वो भी ऐसी पुनर्जन्म वाली वाइब्स है, तो उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था। तो आप यू शुड डेफिनेटली गो चेक आउट द बुक इफ यू वॉन्ट टू, इफ नॉट देन लिसन टू द सॉन्ग।

Damn, done.

0: Cheers. Crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
1: क्या मतलब?
2: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
2: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है. और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं.
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं.
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं.
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
8: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
0: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
9: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
10: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. at 5152 Quadrant Way, Suite 110, Fort Worth, India Bazaar, the People's Store.
11: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
12: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं.
11: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
12: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
11: इंडिया तक.
12: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
8: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
13: ये तारा वो तारा हर तारा.
7: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
14: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, पंडित ईश्वर जी, 9455270897. Or visit astrologerishwar.com.
15: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers.

भाई लोगों, आज मैंने ना बड़ी सही चीज देखी मेरे ग्राम पे। पता है क्या आया? ए 67-year-old वुमन इन कोलंबिया। कोलंबिया इज इन द कंट्री, ठीक है, नॉट द यूनिवर्सिटी। कोलंबिया जिसको बोलते हैं साउथ अमेरिका में, उसने पता है अपना क्या एंटरप्राइज बनाया। मतलब यही ऐसे हो है होनी चाहिए सबकी थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए। शी हैज सोल्ड गॉसिप, अपने पड़ोसियों की गॉसिप इधर से उधर, उधर से इधर बातें कर करके, और उसने वैसे वैसे करके अपने दो घर बना लिए। बाय गॉड, उसने दिस, उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है मीरियम। शी इज 67 फ्रॉम कोलंबियाज, लेट मी सी, कोलंबिया क्विमिडो रीजन, क्विंदियो रीजन, एंड शी स्पेंट ईयर्स कीपिंग नोट्स ऑन द ड्रामा इन अनफोल्डिंग इन अ नेबरहुड। मतलब पड़ोसियों की गॉसिप, कभी फैमिली फ्यूड, किसका पति किसकी बीवी के साथ भाग गया, किसकी बेटी लेट आई घर पे शराब पी के, ऐसे करके उसने गॉसिप्स अपनी सारी रखी अपनी नोटपैड में, और इधर से उधर गॉसिप करती गई और एक्स्ट्रा इनकम बनाई उसने। एंड शी बिगैन चार्जिंग पीपल टू रीड हर नोटबुक। भाई ब्रिजर्टन आई थिंक इधर से इंस्पायर हुआ है, आई एम 100% श्योर। ये जो ब्रिजर्टन वाले जो नहीं होते, स्टोरीज यहीं से बनाते हैं। शी क्लेम्स द एक्स्ट्रा इनकम वॉज इनफ टू बाय हर ड्रीम होम। भाई ड्रीम होम मॉर्गेज को भी बोल देते हैं, ये सोल्यूशन दो अब बाकी सबको। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इवन अ सेकेंड प्रॉपर्टी। हर स्टोरी स्पार्क प्लेंटी ऑफ डिबेट ऑनलाइन। पीपल सेड कि भाई इट्स अ क्लेवर हसल, बट सम पीपल सेड शी ऑफकोर्स क्रॉस द लाइन बाय प्रॉफिटिंग फ्रॉम पीपल्स लाइव्स। हाउएवर, यू नो वॉट, इट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन अमेरिका एवरीथिंग इज अलाउड, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड टेक्निकली गॉसिप्स। आई डोंट नो, इज दैट अ पार्ट ऑफ वॉर? आई डोंट नो, यू टेल मी। मतलब वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लेट्स जस्ट से दैट। यू कैन डू एनीथिंग।

फ्रेंड्स, इट इज 8:56 ऑन द क्लॉक. बाय द वे गाइस, आपको पता है ना, इंडियन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास IANT का 80th इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, विच इज कॉल्ड द आनंद बाजार, इज हैपनिंग ऑन August 15th, विच इज अ सैटरडे, फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एट कमर्शिया सेंटर इन फ्रिस्को. Yes, guys, the best part about this event, it is completely indoors. तो आपको गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी, डैलस की अगस्त की बहुत ही खतरनाक वाली गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी. And secondly, it is free, free, free. Enjoy authentic Indian food, a grand parade, cultural performances, live music, shopping. Bring your family, bring your friends and be a part of North Texas's biggest Indian Independence Day celebration. Jana Gana Mana gaayenge hum saath mein milke. Abhi main nahi ga rahi, nahi to sab khade ho jayenge aur matlab ekdam attention pose mein aa jayenge. Abhi nahi ga rahi hum, main pura, main sirf aapko preview de rahi hu. So Indian Association of North Texas Anand Bazaar 2026, theek hai, yaad rakhna. Chale jao yaar, Saturday ko hai, kya karoge, jao enjoy, have some fun.

इट इज 9:05 ऑन द क्लॉक और मैं आपके साथ सिर्फ एक घंटे और हूँ एंड यू गाइज आर लिसनिंग टू इपी द हिपी ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM एंड दिस इज माई शो एन इवनिंग इन डैलस. This part of the show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax and accounting firms in America. Agar aap individual hain, startup hain ya established business, they offer innovative financial solutions tailored to your needs. Agar aapko bookkeeping ki zarurat hai, payroll accounting, bank and credit card reconciliation, proactive tax planning, compliance, financial reporting, business advisory services, they help you keep your finances organized and future ready. They are trusted, efficient and committed to finding your success. AG Fintax is your partner in building a strong financial future. Call 469-942-9888 or visit agfintax.com today. गाइस पता है आज मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग सी रिसर्च मिली. पता है क्या रिसर्च थी? द रिसर्च वाज अगेन द साइकोलॉजिस्ट एंड आई केम अक्रॉस थ्रू अ वीडियो व्हिच बेसिकली सेज दैट आई फॉरगॉट द साइकोलॉजिस्ट. मुझे ना याद नहीं रहता है आजकल नाम. आई एम गेटिंग ओल्ड बट इट्स ओके. पॉइंट मतलब नाम रखने का याद नहीं है. द पॉइंट इज नॉट टू रिमेंबर द नेम ऑफ हु सेड इट बट द पॉइंट इज वॉट was being said and whether or not you accept it or not. I mean, that's up to you. However, let me get to the point. The point is ki when it comes to stress or handling tricky situations or stressful situations, men and females, males and females, men and women, they respond to stress very, very differently. तो जब स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है कॉर्टिसोल वगैरह सबका बढ़ता है. यू नो वी नो दैट्स ऑल अ हार्मोन. स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ पुअर हेल्थ एंड लाइक यू नो एंड इट इज कॉज्ड इट आल्सो कॉजेज योर कॉर्टिसोल व्हिच इज अ स्ट्रेस हार्मोन टू राइज इन योर बॉडी. एंड उसके ना बहुत सारे फिजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं जैसे वेट गेन होता है, हार्ट इश्यूज होती है, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर रिलेटेड. तो वो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं. हाउ एवर It says men and women respond to stress differently. How do they respond to differently? Men tend to release a chemical called dopamine, which we all know. I mean, I hope you all know. Agar nahi pata, toh main aapko bataungi what dopamine does. And women respond to stress by releasing a chemical or a hormone called norepinephrine. क्या है? Norepinephrine. Such a hard word. Let me research that word again and let me get back. It's such a difficult word, यार. कहीं कहीं ये जो हार्मोन के नाम होते हैं, they are kind of hard. But आप ये गाना सुनिए. Let me research that word one more time and get back. क्योंकि मुझे अपनी writing अभी समझ नहीं आ रही है. मैंने लिखा क्या है?

तो गाइज मैंने अभी बैठ के ना, जब गाना चल रहा था, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही थी बैठ के, एक ही वर्ड को 4-5 बारी पहले कैसे बोलते फिर बोलते. सो द वर्ड इज नोरेपिनेफ्रिन. ओ माई गॉड, दैट इज ए हार्ड वर्ड टू से, नोरेपिनेफ्रिन. तो वुमेन रिलीज ए केमिकल कॉल्ड नोरेपिनेफ्रिन, एंड उससे क्या होता है. ओके, डोपामीन इज दैट काइंड ऑफ अ हॉर्मोन और दैट केमिकल विच मेक्स यू डू थिंग्स, यू नो. तो जैसे कई लोग यू नो एक्सरसाइज जो करते हैं ना, ऑफकोर्स यू नो, जैसे ADHD होता है जिन लोगों के, उनके बॉडी में ना डोपामीन कम होता है, तो दे ट्राई एंड डू समथिंग दैट एक्साइट्स देम ऑन एन एवरी डे बेसिस विच मेक्स देम डू थिंग्स, एंड उससे डोपामीन यू नो आता है, लाइक यू नो यू गेट दैट बूस्ट ऑफ दैट डोपामीन. या फिर सम पीपल हु आर ऑल्सो ऑन एडरऑल और दूस काइंड ऑफ मेडिसिन एंड स्टफ लाइक दैट, इट्स बेसिकली एन एडजस्टमेंट ऑफ डोपामीन. दैट्स वॉट मेन वर्क विद. एंड वुमेन का जो है नोरेपिनेफ्रिन, विच बेसिकली कॉजेज देम टू थिंक. ओके, वुमेन रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस बाय थिंकिंग और बाय फोकसिंग और बाय रूमिनेटिंग ऑन वॉट इज द थिंग दैट इज एक्चुअली कॉजिंग द स्ट्रेस. एंड मैन ऑन द अदर हैंड, जैसे ही स्ट्रेस आता है, लाइक ओ लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, ये करते हैं वो करते हैं. डू यू रिलेट टू दैट? इफ यू आर अ गाय और अ गर्ल, हु एवर इज माई लिसनर राइट नाउ, मे बी यू रिलेट टू इट एंड मे बी यू डोंट, बट वी आई टेल यू मोर अबाउट हाउ टू वॉट आई फाउंड आउट आफ्टर दिस सॉन्ग.

तो गाइज हम जो बोल रहे थे वो ये है, बाय द वे गाइज थैंक यू सो मच फॉर द लवली कॉल्स. अगर मैं आपकी कॉल मिस कर रही हूँ ना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं शायद बातें कर रही हूँ. तो वसीम जी आप सुन रहे हैं रेडियो, अगर कि आपकी कॉल आ रही है, मुझे दिख रही है, तो प्लीज़ मुझे 5 मिनट बाद कॉल करिए जब मैं बात नहीं कर रही हूँ, देन आई कैन आंसर योर कॉल. लेकिन अभी तो हम थोड़ी सी बातें कर रहे हैं. तो गाइज जैसे मैं बोल रही थी, डोपामाइन पुट्स मेन इन द वर्क मोड एंड एक्शन मोड. मेन स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा इसको कैसे सॉल्व करें, जल्दी जल्दी करते हैं. वुमेन ऑन द अदर हैंड लाइक ओ नो ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ, ओ नो अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. वुमेन स्टार्ट लाइक ओवर थिंकिंग एंड वी स्टार्ट एनालाइजिंग एंड रूमिनेटिंग ओवर इट. बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज़ द परफेक्ट बैलेंस. ठीक है, अगर आप बिना सोचे बिना थिंक करके एक्शन लोगे तो वो सारा काम उल्टा होता है. ठीक है, और अगर सिर्फ सोचते रहोगे सारे दिन अगर यू नो लाइक इफ यू बिहेव लाइक दैट एंड सब सोचते रहेंगे ओ नो मेरी जिंदगी कितनी खराब हो गई, हाय कितने प्रॉब्लम आ गए, ओ नो, तो फिर कोई एक्शन अभी कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा. तो इफ यू थिंक अबाउट इट, स्ट्रेस इज सपोज टू बी हैंडल्ड बाय गर्ल्स एंड गाइज इक्वली. दैट इज वाई दिस पार्टनरशिप इज क्रिएटेड, सो बोथ ऑफ यू कैन टेक लॉजिकल डिसीजंस. ठीक है, वुमेन कैन थिंक लॉजिकली वॉट मेक सेंस एंड देन द गाइज कैन डू द थिंग. आई मीन आई डोंट नो हाउ मच ऑफ ट्रूथ इज देयर. टेक्निकली अगर आपके दिमाग में ये दोनों बात आ गई है सो यू कैन हैंडल इट बाई योर सेल्फ. ओके, बट यू हैव टू ट्रेन योर माइंड. आई एम नॉट सेइंग दैट गाइज कैन नॉट थिंक बिफोर डूइंग इट एंड वुमेन कैन नॉट डू इट, दैट्स नॉट वॉट आई एम सेइंग एट ऑल. बट आई एम ऑल्सो सेइंग दैट नॉर्मली ऐसे होता है. हाउ एवर इफ यू आर अ पर्सन लाइक मी एंड यू डोंट हैव अ मैन टू बैलेंस इट आउट एंड डू द वर्क फॉर यू, देन यू नो वी थिंक एंड देन वी प्लान एंड देन वी डू द वर्क एंड द सेम गोज फॉर द अदर साइड. ओके, तो आप ये गाना एंजॉय करिए, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दीज सॉन्ग्स. एंड वसीम जी इन केस यू आर ट्राइंग टू रीच एंड कॉल मी, दिस इज द टाइम टू कॉल मी नाउ वाइल द सॉन्ग इज गोइंग ऑन, सो आई कैन पुट ऑन अ रिक्वेस्ट फॉर यू.

गाइज, हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, हाउ मेन एंड वुमेन डील विद स्ट्रेस डिफरेंटली. हाउएवर, अगर आपको ऐसा कोई स्ट्रेस चल रहा है एंड यू नीड टू फिगर आउट हाउ टू फाइंड पीस एंड म्यूजिक एंड मेडिटेशन इन योर लाइफ, देन यू नीड टू रीच आउट टू अर्चना दीदी फॉर ए फ्री 3-day रिट्रीट इन DFW. यस, द कीवर्ड हियर इज फ्री फ्री फ्री. ज्वाइन August 7 को एट भारतीय निवास इन रिचर्डसन. अगर आपको नहीं पता भारतीय निवास क्या है, अगर आप 6:35 से ड्राइव कर रहे हैं, 6:35 पे ड्राइव करें, यू विल सी दिस जायनॉर्मस बिल्डिंग कॉल्ड भारतीय निवास, विच इज बेसिकली लाइक ए रिटायरमेंट होम ओनली फॉर अस देसीज. August 8 और 9 मॉर्निंग को एट श्री रघुनाथ टेम्पल इन प्लेनो, एंड August 8 शाम को एट DFW हिंदू टेम्पल, विच इज बेसिकली एकता मंदिर इन अर्विंग. तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन, सोलफुल म्यूजिक एंड फ्री फ्री फ्री प्रसाद भी मिलेगा जो कि है वेजिटेरियन. रजिस्टर फ्री नाउ एट meditation.funasia.net. मेडिटेशन कैंप विद अर्चना दीदी. पहली 30 रजिस्ट्रेशन विल गेट अर्चना दीदीज ऑडियो एंड वीडियोज, जिससे आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. समझे क्या? तो हम एक गाना सुनते हैं. मैं आपके साथ सिर्फ आधे घंटे हूँ. दिस इज एपी द हैप्पी एंड आई विल बी हियर विथ यू फॉर अनदर 30 मिनट्स. इंजॉय दिस ट्यून, क्योंकि हमारा दिल भी चाहता है कहीं छुट्टी मनाने का, गोवा शोवा जाने का यार, पर मैं तो जा ही नहीं पाती. कोई बात नहीं, आप जाइए मेरी तरफ से.

गाइज वी आर बैक। और गाना थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आप ये वाला गाना सुनिए। इट इज 9:47 ऑन द क्लॉक। आई एम हियर विद यू फॉर जस्ट अनदर मे बी लाइक 5 और 10 मिनट्स और समथिंग। सो एंजॉय दिस सॉन्ग।

भाई मैं वो गाना ना जब पहली बार आया था वो गाना, आई डेंट एक्चुअली पे दैट मच अटेंशन टू इट. लेकिन अब मैं उसको बार बार सुनती हूँ ना, लाइक फ्रॉम वट एवर ऑल माई लर्निंग्स एंड ऑल माई पर्स्पेक्टिव्स आई हैव गॉट नाउ, तो मुझे कई बार लगता है कि यार दिस इज दैट सॉन्ग. अगर मैं कहूँ इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ द वुमेन, द मॉडर्न डे वुमेन इज चेंजिंग. ओके, और ये बंदा अपने वही पुराने ख्यालों में पड़ा हुआ है कि मैं, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो. उसको बड़े अपने तरीके से इम्प्रेस कर रहा है, लाइक अ टिपिकल बॉलीवुड एक्टर. ठीक है, अगर अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो वो लड़की कह रही है तो मैं क्या करूँगा भाई, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, व्हाट डू आई डू विद इट. ठीक है, मतलब उसके अलावा उसने कुछ किया तो नहीं है ना, उसने उसको बोला है कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, या ना उसने बोला है कि हे लेट्स डू समथिंग टुगेदर. उसने बोला मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, लाइक अ डिक्लेरेशन ऑफ लव. व्हाट डज द गर्ल डू विद इट भाई? वो कह रही है मुझे फूल मत बोलो, ठीक है फूल इज ग्रेट एंड ऑल दैट, बट व्हाट एल्स? आई मीन कम ऑन, बी ओरिजिनल. ओके, आई मीन फूल ये वो सब, ये सारी चीज़ें तो सब बोलते रहते हैं, बट आई एम अ चेंजिंग वुमन, गिव मी समथिंग मोर दैट यू वॉन्ट ऑफर मी दैट इज कम्प्लीटली रेलिवेंट टू माई करियर ओरिएंटेड कैरेक्टर दैट शी वॉज एक्चुअली पोर्ट्रेइंग. शी वॉज ट्राइंग टू पोर्ट्रे बरखा दत्त इन द मूवी लक्ष्य, है ना? तो आई थिंक वाओ, इट्स क्वाइट क्वाइट रिमार्केबल. एनी वेज गाइज, इट इज 9:53 ऑन द क्लॉक. आई एम अबाउट टू साइन ऑफ. आई होप यू एन्जॉय टूडेज शो. आई विल बी बैक हियर टूमोरो फ्रॉम 7 to 10 PM अगेन, ओनली ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. दिस इज एपी द हिपी साइनिंग ऑफ. And we shall see you tomorrow. You enjoy these tunes.

Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

Bringing South Asia closer, more closer. Phonasia, 104.9 FM.

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it. Hey.

0: the heartbeat of Dallas. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है।

0: मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
2: अब तू आ गई है।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

पुलिस सब क्या बोल रहे सब लोग एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। लेट्स डू इट।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
4: अजी सुनते हो?
5: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
6: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
7: Yeah, this is Shakti Kapoor, and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

0: Thank you, Father. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है।
0: अरे क्यों?
1: नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: बेटी देखिए आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता।
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
2: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
1: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

0: नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो

0: बोले नीचे से रे नीचे से।
1: सुने रानिये नी ठाट बाट देख किंग दे, तू ही जच दी है नाले इस सोने सिंग दे।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू, डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
4: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: अरे ओ मोनालिसा।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

और जब तुम उसकी बारात में क्रैश लैंड हुई टल्ली हो गए। उस दिन कॉलेज वाले प्यार से फॉरएवर वाला प्यार हो गया तुमसे। बाय गॉड।

5.5 गर्लफ्रेंड्स के बाद ये रियलाइज किया कि ऊपर वाले ने एक ही तुम बनाया। पर तब तक तो मेरी यादों की नहीं, सबके सितारा बन चुके।

0: capable of anything.
1: The Magic 24/7, only on 104.9 FM.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़

0: यार,
1: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
3: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
4: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त।

0: ऐप पर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ।
3: अच्छा सुना है? सुना?
2: हाँ। वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी,
3: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनेशन।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Financial 104.9 FM.

0: हेल्प मी,
1: काश
0: प्लीज हेल्प मी।
1: तू मेरी आँखें भर दे।
2: ऐसे कैसे गायब हो गए?
3: पता नहीं सर।
2: अरे रिकॉर्डिंग्स लाइंड अप है, शोज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। कौन करेगा ये सब? पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों।
3: जी सर पता लगा रहा हूँ।
4: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
5: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायल्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
6: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
7: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग।
2: हाँ।

बजाए प्यार की शबनम मेरे गुलिस्तान है, बरसते रहते हैं हर सिमत मौत के साए, स्याहियों से उलझ पड़ती हैं मेरी आंखें, कोई नहीं कोई भी नहीं जो बताए मैं कितनी देर उजालों की राह देखूंगा, कोई नहीं है कोई भी नहीं ना पास ना दूर, एक यार है दिल की धड़कन अपनी चाहत का जो ऐलान किए जाती है, जिंदगी है जो जिए जाती है, खून के घूंट पिए जाती है।

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Weekend ka plan abhi tak nahi mila. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye, to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
5: अजी सुनते हो?
6: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
0: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
7: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
7: कहाँ?
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
1: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
14: क्या मतलब?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
16: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
18: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
17: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.

0: It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
10: कौन सा?
9: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
10: अरे सारे तो सेम है।
9: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
10: ओह हाँ, ये तो अलग है।
11: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
12: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
13: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
14: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
15: जिंदगी एक रंगमंच है
16: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
11: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com.
17: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th, from 9 a.m. to 10 a.m. at 5152 Quadrant Way, Suite 110, Fort Worth, India Bazaar, the People's Store.
18: Hello, Texas Parivar. Where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Ko at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
19: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
19: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
19: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
0: Thank you very much for joining us in this hour of the program, and we will get you caught up. But do receive my very warm welcome. Triple digits continue. 13 triple digit days is what we've had as of yesterday, but they continue through the week and the weekend. You all do know it is right now the hottest time of the year.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: अरे यार, घर मिल गया।
2: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
3: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
2: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
3: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
4: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
5: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
6: लिया।
5: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
6: नहीं आया।
5: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
7: Visit www.senadainc.com today.
8: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
9: क्रेविंग डिलीशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड? रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो। विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, रिचर्डसन एंड नाउ अ न्यूएस्ट लोकेशन इन एलन एट वाटर्स एंड 121। वेदर यू आर डाइनिंग इन, टेकिंग आउट और केटरिंग, रेड हॉट चिली पेपर इज डैलस' नंबर वन चॉइस for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
10: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
11: उमर ख्वाजा।
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
13: I am Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

0: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
1: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
2: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.

होने वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

0: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
1: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
0: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
1: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
0: ये क्या होता?
1: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
2: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
3: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Ocho.
6: Hoko.
5: Ocho.
6: Hoko.
5: Ocho.
6: It's Hoko.
7: अरे बस भी करो यार।
6: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
7: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
3: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरीड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: सुनो कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
12: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
11: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
18: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
19: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
5: There are so many factors that impact your insurance premiums. My name is Umaira Jamani and I am from Sanada Inc. Today I'm here to give you an update on auto insurance premiums. There are so many factors that impact your insurance premiums due to high cost of the labor, material, and because of the higher inflation, higher claims, your auto insurance premium is getting higher. Me and my team, we are available to assist you because we have access to more than 450 carriers and we are your one-stop shop for all the insurance needs. If you are looking for auto, home, life, health, Medicare or commercial insurance, do contact me or my team at 972-863-7772. 972-863-7772. Thank you.

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, यू रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: Organization's core team in Maharashtra's Chhatrapati Sambhaji Nagar. Undeterred by relentless rain, hundreds of students gathered at the Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi before setting out on a Tiranga march to the Albert Ekka Chowk, intensifying an agitation that has entered its second week over alleged irregularities in Jharkhand's recruitment examinations. And the Bombay High Court expressed concern over the impact of the Maharashtra resident doctor strike on patients and warned the protesting doctors that it would order their salaries to be stopped if they failed to return to work immediately. Pakistani military helicopters airlifted the bodies of five climbers from the snow-covered slopes of Broad Peak nearly a week after an avalanche swept away a 10-member international expedition. And Pakistan beat the West Indies by 8 wickets on the fourth day of the second and final test at Queen's Park Oval in Trinidad yesterday to level the series. Pakistan authorities have launched a high-level effort to trace boxer Kudratullah, who failed to return home with the national contingent at the Commonwealth Games in Glasgow. And the sons of ex-Prime Minister Imran Khan, Qasim and Suleiman, have reiterated concerns about their incarcerated father's health in a fresh interview. He has been 3 years behind bars. Prime Minister Shahbaz Sharif today left for a three-day visit to Saudi Arabia, where he will be accompanied by Chief of Defence Forces and Chief of Army Staff Field Marshal Asim Munir. And that's all I have in the news for you.
1: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
2: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaizerway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco. If you hold H1B, F1, L1, or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB5 Investor Program. For more information on the EB5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
4: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
5: ये तारा वो तारा हर तारा.
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
6: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा.
2: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
7: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
2: विजिट पैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन.
8: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स.
9: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
10: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
11: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
10: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
11: इंडिया तक।
10: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
2: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
0: एन हैथवे डाइड ऑन टुडेस डेट इन 1623 एट स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन इंग्लैंड, द वाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड मदर ऑफ हिज थ्री चिल्ड्रन, एंड वेरी लिटिल इज नोन अबाउट हर बिकॉज ऑफ द स्पार्स हिस्टोरिकल रेकॉर्ड्स मेकिंग हर एन एनिग्मेटिक फिगर एंड द सब्जेक्ट ऑफ मच speculation. Also dying on today's date in the year 1660 in Madrid was the most important Spanish painter of the 17th century, a giant of Western art, Diego Velázquez, whose brilliant diversity of brush strokes and subtle harmonies of color made him a forerunner of 19th century French Impressionism. It was, meanwhile, across the pond in Philadelphia, that delegates to the Constitutional Convention began debating the first complete draft of the proposed Constitution of the United States on today's date in 1787. And in 1806, the Roman Empire, that has fallen three times, first to the Germanic warriors, then at the hands of the Ottoman Sultan, and finally before Napoleon Bonaparte on today's date in the year 1806. And then on today's date, in 1809, Alfred Tennyson was born in Lincolnshire, England. The English poet, often regarded as the chief representative of the Victorian age in poetry, raised to the peerage, Lotus Eaters, Ulysses, and the Charge of the Light Brigade.
13: Half a league onward, all in the valley of death rode the 600. Forward the Light Brigade, charge for the guns, he said. Into the valley of death rode the 600.
0: The Charge of the Light Brigade, celebrating the self-sacrifice and heroism of 600 soldiers who charged against a 25,000-strong Russian army during the Crimean War. That was the Light Brigade. Was there a man dismayed? Not though the soldier knew. Someone had blundered. Theirs not to make reply. Theirs not to reason why. Theirs but to do and die. Into the Valley of Death rode the 600. Some stories from the annals of history. Bolivia declared its independence from Spain on today's date in 1825. Edith Roosevelt was born on today's date in 1861. The American First Lady, the second wife of Theodore Roosevelt, the 26th President of the United States. She was noted for institutionalizing the duties of the First Lady and refurbishing the White House. The CSS Arkansas, the most feared Confederate ironclad on the Mississippi River, is blown up by her own crew after suffering mechanical problems during a battle with the USS Essex near Baton Rouge in Louisiana on today's date in 1862. Alexander Fleming was born on today's date in 1881 in Scotland. A Scottish bacteriologist, best known for his discovery of penicillin, he had a genius for technical ingenuity and original observation. The founder of penicillin, Alexander Fleming. And at the Auburn prison in New York, the first execution by electrocution in history is carried out against William Kemmler, who'd been convicted of murdering his lover with an axe. The first execution by electric chair on today's date in 1890. Dutch Schultz was born on today's day in Bronx, New York, the American gangster of the 20s and 30s who ran bootlegging and other rackets in New York City. Went on to become New York's most feared criminal. 33 years later, his life came to a violent and bloody conclusion when he was shot down in the men's room of the Palace Chop House in Newark, New Jersey.
14: Ricky?
15: Yeah, who's this?
14: This is Jerry, your agent, remember? Yeah, I'm way over in Jersey. Listen, I signed up that dog act for you. They're all set for next week.
15: Good.
14: Yeah, now I gotta go see a talking seal.
0: I love Lucy. Lucille Ball, ladies and gentlemen, was born on today's date in 1911. And that happened in Jamestown, New York. A radio and motion picture actress and longtime comedy star of American television, best remembered for this classic television comedy series, I Love Lucy. The co-founder of Desilu Studios, which also produced Star Trek and Mission Impossible. Robert Mitchum was born on today's date in 1917 in Bridgeport, Connecticut. The American film star whose roles as a cool, cynical loner, combined with a notorious personal life and a sardonic, relaxed style to create that durable screen image as a fatalistic, tough guy, Robert Mitchum.

सो आवारापन टू का ट्रेलर लॉन्च हो गया है. जी हाँ, कल ही आवारापन टू का ट्रेलर आया जिसमें इमरान हाशमी हैं और दिशा पटानी हैं, उनके साथ शबाना आजमी भी दिख रही हैं. एंड इस ट्रेलर को काफ़ी सराहना मिली है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है. द ट्रेलर फील्स लाइक अ ट्रू कंटिन्यूएशन ऑफ द 2007 कल्ट क्लासिक रादर देन अ रिमार्क और अ रीबूट, रीमेक और अ रीबूट, आई एम सो सॉरी. एंड आवारापन का जो 2007 में आई थी उसमें भी इमरान हाशमी थे, श्रेया शरण थी उनके साथ, मृणालिनी शर्मा थी. एंड 2007 वाली मूवी के गाने बड़े खूबसूरत थे. इस फिल्म में इमरान हाशमी की एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था. एंड नाउ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवारापन टू. तो भाई आवारापन जो पुरानी वाली थी, मुझे याद है उसके गाने बड़े खूबसूरत थे और उसमें से एक मेरा फेवरेट ये था.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: वेट, इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं हीरो।
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
1: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
8: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
9: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop infotainment.
10: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक पे जाने के पहले आप सुन रहे थे अपनी होस्ट आयुषी गौर, अभी भी मैं यहाँ हूँ आपके साथ गपशप गली में। ये गली मीठू की है पर इसमें मैंने अपनी जगह बनाई है कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए में से अब सारे दिन खत्म हो गए हैं। आज और कल मैं आपके साथ रहूंगी, आपको एंटरटेन करूंगी और उसके बाद मीठू फिर वापस आएंगी। लेकिन आज हम बात कर रहे थे कुछ नए ट्रेलर लॉन्चेस की और एक और ट्रेलर लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले जो कि है बटवारा 1947 का। और इस फिल्म में प्रीति जिंटा इज कमिंग बैक ऑन स्क्रीन आफ्टर 8 ईयर्स। और प्रीति जिंटा के साथ इस फिल्म में है सनी देओल साहब। बड़ा ही दमदार और बड़ा ही खूबसूरत ट्रेलर लग रहा है इसका। और प्रीति जिंटा और सनी देओल ने एक और फिल्म में पहले काम किया था। चलिए सवाल आपसे पूछती हूँ, कौन था वो फिल्म? उस फिल्म का गाना आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो कौन सी फिल्म है जो प्रीति जिंटा और सनी देओल ने साथ में की है?

So, ये गाना था फिल्म द हीरो का, जिसमें सनी देओल और प्रीति जिंटा साथ दिखे हैं और वो एक बार फिर से वापस आ रहे हैं बंटवारा 1947 में. और इस फिल्म का ट्रेलर बड़ा ही बहुत ही इमोशनल और बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है. सनी देओल एक इंटेंस इमोशनल अवतार में आए हैं, नॉट जस्ट एन एक्शन हीरो बट अ मैन स्ट्रगलिंग विद द पेन ऑफ लूजिंग हिज होम एंड आइडेंटिटी. और बंटवारा एक ऐसा है ना, 1947 का जो बंटवारा हुआ था, इस पर कई सारी फिल्में बनी हैं और हर बार ये लोगों के दिल को छू के जाती है. बिकॉज ही ये एक बहुत ही बड़ा, दिस इज़ अ स्कार, अ बिग स्कार ऑन द व्हेन द इंडिपेंडेंस वाज गिवन टू बोथ द कंट्रीज बाय द ब्रिटिश. तो बहुत ही बड़ा एक ये स्कार रह गया है जिसके ऊपर हर बार फिल्म बनती है तो दिल को छू जाती है. प्रीति जिंटा के भी एक्टिंग को बड़ा ही सराहा जा रहा है बिकॉज शी इज़ ऑन द स्क्रीन आफ्टर 8 ईयर्स एंड she's been seeing as a very एक मदर जिसके प्यार और दुख की कहानी यहाँ पे दिखाई जा रही है. सो यस, लेट्स सी. ट्रेलर बहुत ही प्रॉमिसिंग है और काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिल रहा है इसको. अब ये देखते हैं कि मूवी कैसी होगी, राइट? तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और पहले तो आपको ये जानकारी दे दें दैट इफ यू आर इन्वॉल्व इन अ ट्रक और कार एक्सीडेंट, अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, यानी उमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. और हम सबको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी से डील करना कितना स्ट्रेसफुल होता है और आपको एक ऐसे अटर्नी की जरूरत है हु विल मेक श्योर दैट यू आर कंपनसेटेड. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट पे अंटिल यू विन. फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 4693005046. आई रिपीट, द नंबर इज 4693005046 और विजिट attorneyomar.com. चलिए अगले गाने की तरफ जल्दी से आपको लेके चलते हैं.

सो ही वॉज दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना. और भाई ऐसा ही होता है जब एक बार 90s के गानों के नाम ले लो या फिर पुराने गानों की बात कर दो तो रिक्वेस्ट उधर की ही आने लगती है. और ऐसी ही बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ चुकी हैं 90s के गानों की, जिसको हम आप तक लेकर के आएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद.

0: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
1: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
0: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
2: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
5: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
7: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
8: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
9: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
10: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
11: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
12: Aji, sunte ho?
1: Aji, nahi. Aji, sunte.
0: The OG of tax planning, AG Fintax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday, 9:45 a.m. only on Fun Asia Radio.
13: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
14: On the right track.
15: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में। गली है मीटू की, पर मैंने इसमें अपनी जगह बना ली है फ्राइडे तक, और फ्राइडे तक बैठ के आपको एंटरटेन करने वाली हूँ, आपसे बातें करने वाली हूँ, आप तक कुछ खबरें लाने वाली हूँ और आपको खूबसूरत गाने सुनाने वाली हूँ। फिलहाल मेरे शो पे 90s के गानों का सिलसिला चल रहा है। 90s का नाम आते ही ना लोग अपनी फरमाइशें देना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्यों ये गाने ना दिल को छू जाते हैं। पर यार दिल को बहुत सारी बातें छू नहीं रही हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में ना हर बात को पहुंचाने के लिए आजकल लोगों को अनशन पे बैठना पड़ रहा है। और ये बात मैं फिर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे अपने प्रदेश में, जहाँ से मैं आती हूँ, जहाँ मेरा परिवार रहता है रांची में, वहाँ के स्टूडेंट्स फिर से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। और प्रोटेस्ट पे बैठ करके वो एक छोटी सी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एजुकेशन सिस्टम सुधरे। आई डोंट नो आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस और नॉट, बट मेरा बहुत मन था कि मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूं, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अबाउट वन स्टेट, इट्स अबाउट द कंट्री वी कम फ्रॉम। और वहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट ही की बात हो रही है। और सबसे बेसिक चीज़ खाने और पानी के बाद सबसे बेसिक चीज़ है एजुकेशन। और अगर एजुकेशन ही साफ ना हो, अच्छा ना हो, और स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं ना कि देश का भविष्य होते हैं, जब उनको सड़कों पर उतरना पड़े तो बहुत बुरा लगता है। पर क्या कर सकते हैं, आज शायद सिस्टम इतना ख़राब हो गया है हमारे देश में कि हमें कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाला है नहीं, और बच्चों को सड़क पे आकर के, स्टूडेंट्स को सड़क पे आकर के धरना देना पड़ रहा है। एंड बहुत ही शर्म की बात है, पर क्या करें। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, आपका मूड अच्छा करते हैं कुछ 90s के प्यारे गानों के साथ।

एंड दिस सॉन्ग वॉज रिक्वेस्टेड बाई आर रेगुलर कॉलर सफी, उनके लिए था ये गाना. एंड ऑल्सो दिस पार्ट ऑफ आर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाई AG फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. वेदर यू आर एन इंडिविजुअल, अ स्टार्टअप और एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, AG फिनटैक्स ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टेलर्ड टू योर नीड्स, फ्रॉम बुककीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशन टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग and business advisory services. They help keep your finances organized, compliant and future ready. Trusted, efficient and committed to your success. AG Fintechs is your partner in building a stronger financial future. Call 469-942-9888. I repeat, it's 469-942-9888 or visit agfintechs.com. तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 FM पे. स्टूडियो का नंबर है 9722355555. 90s के गानों का सिलसिला चल रहा है. अगर आप भी अपनी फरमाइश देना चाहते हैं, किसी को सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, बर्थडे विशेस देना चाहते हैं, एनिवर्सरी विशेस देना चाहते हैं, बस यूं ही याद करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और गाना रिक्वेस्ट कर सकते हैं.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: Restaurant choose karna ho? Google reviews. Hotel book karna ho? Google reviews. Lekin bachcho ke doctor ki jab baat aaye to ek hi review sabse important hota hai. Maa ka review.
5: Isliye Dr. Farhad has been recognized as a DFW Child Mom Approved Pediatrician for 4 consecutive years, 2023 through 2026. Meet Dr. Nishat Farhad at Passion Health Pediatrics, serving families at Frisco and Aubrey, starting at the end of August. Passion Health Primary Care, because every healthy smile begins with trusted care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
6: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेज एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
5: चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
7: आर यू सीकिंग क्लैरिटी इन लाइफ, वंडरिंग व्हाट डेस्टिनी हैज इन स्टोर फॉर यू?
8: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
7: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
8: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
9: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
10: लिया.
9: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
10: नहीं आया.
9: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
11: Visit www.senadainc.com today.
12: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
13: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
12: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
13: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
12: और एंटरटेनमेंट,
13: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
12: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
13: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
14: हाय, दिस इज सैफ अली खान. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.
15: डालस की धड़कन 104.9 एफएम. Fun Asia Radio.
16: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को गपशप गली में, और इस गली में मैंने अपनी जगह बना ली है फ्राइडे तक. जी हाँ, आज 12:30 बजे तक आपके साथ हूँ, और कल भी आपको एंटरटेन करूँगी, आपसे बातें करूँगी, आपकी फरमाइशें लूँगी, और उसके बाद मीठू वापस से अपनी गपशप गली में आ जाएंगी. फिलहाल वो छुट्टियों पर हैं और अपना वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, और सफ़र चल रहा है 90 के पुराने गानों का, जहाँ पर यू नो जो गाने दिल के सबके करीब हैं. हैं, अगर आपके भी मन में कोई गाना है, कोई फरमाइश है, कोई डेडिकेशन है, तो आप फ़ोन उठाइए, कॉल करिए 972-235-5555 पर और अपने पसंद के गाने हमें बताइए, हम ज़रूर आप तक लेकर के आएंगे वो गाने। और फिलहाल एक फरमाइश आई हुई है 90s के गाने की है, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गाना है फिल्म साजन से, तो इसका मज़ा लीजिए।

अच्छा चलिए एक बात बताइए, आपके डॉक्टर्स जब आप अपने हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो आपके साथ कितना समय बिताते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट? एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. जी हाँ, एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली. फॉर यू, योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ केयर. 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल, एंग्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, वाइटामिन B12 डिफिशियंसी टेस्टिंग एंड मोर. ये सब कुछ अवेलेबल है पैशन हेल्थ पे. आज ही अपना अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करें. इनका नंबर है 214-666-6259, एंड आई रिपीट, द नंबर इज 214-666-6259. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज आर पैशन. और अपने 90s के गानों के सफर को आगे बढ़ाते हैं. भाई 90s की जब बात आती है ना, तो लोगों के दिल के तार चढ़ जाते हैं, उनके मन में वो सारे प्यारे प्यारे गाने आने लगते हैं जो कि हम कहीं, मतलब यू नो, आजकल के गानों के चक्कर में भूल गए हैं. और जैसे ही एक दो 90s का नंबर प्ले होता है, फिर तो भाई कॉलों की यहाँ पे लड़ी लग जाती है, मज़ा आ जाता है जब आपके कॉल आते हैं. ऐसी ही एक गाने की फरमाइश आई है शोभा जी की तरफ से, सो हियर्स दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर यू.

Diamonds aren't just forever. They are even more resistible during the Tanishq Festival of Diamonds. Enjoy up to 25% off on diamond value and making charges plus 100% deduction on the exchange of gold above 18 carat. Celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq. Terms and conditions apply. Visit Tanishq in Frisco. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट को फनीशिया 104.9 FM पे. मैं स्टूडियो का नंबर बताने लगी थी क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से बताना चाहिए आप लोगों को कॉल करने के लिए, क्योंकि जल्दी ही हमारा गिव अवे सेक्शन आने वाला है जहां पर हम सैन इटली रेस्टोरेंट की तरफ से आपको दो गिव अवे देने वाले हैं, दो कॉलर्स को. जी हाँ, तो चलिए स्टूडियो का नंबर याद दिला रही हूँ, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. आपकी होस्ट आयुषी आपके कॉल्स का इंतजार करेगी. 90s के गानों का सफर चल रहा है और देखते हैं ये जो गाड़ी चल रही है वो 90s के गानों पर टिकी रहती है, मतलब 90s 2000s वाले गानों की तरफ, या फिर कोई एक ऐसा बंदा आएगा बीच में जो मुझे बोलेगा कि अब मुझे सुनना है कोई धमाकेदार नंबर धुरंधर का या फिर अभी के कोई ट्रेंडिंग ट्रैक्स का. तो देखते हैं हु डज दैट टू मी. फिलहाल ये बहुत ही प्यारा सा गाना आप लोगों के लिए.

0: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? Omar Khwaja.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bhartiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad. Register free now at meditation.funasia.net.
15: आपके सुहाने सफर का साथी Fun Asia Radio।
16: में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को। और गपशप गली है ये, जहाँ पे गली में गपशप चल रही है और मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने अगले सेगमेंट में ना अंताक्षरी खेली जाए। अगला एक घंटा जो है उसमें, एक घंटा, आधे घंटे काफ़ी है, अंताक्षरी खेलते हैं अपने लिसनर्स के साथ, थोड़ा मज़ा करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। और अंताक्षरी कुछ इस तरह से होगी कि मैं गाना प्ले करने वाली हूँ, आपको फ़ोन उठाना है, मुझे कॉल करना है 9722355555 पे और बताना है कि इस फिल्म में एक्ट्रेस या एक्टर कौन है और उनके फिल्म का एक गाना बता देना है। बहुत ही सिंपल सा गेम है, देखते हैं कि कौन होता है मेरा पहला कॉलर इस गाने को जो सुनते ही कॉल करके मुझे ये बताएगा कि इस गाने में एक्ट्रेस या एक्टर कौन है। हिंट दे देती हूँ इसमें, चलो एक्ट्रेस बता दो और इसके बाद उसी की मूवी का दूसरा गाना आप ही बताएंगे मुझे। तो ये रहा पहला गाना।
17: Flowers have the following parts: calyx, corolla, stamen and stigma. They come in different colors and different scents. Even now, one cannot help but wonder at this marvel of nature.

0: हेलो फनीशा, आप ऑन एयर हैं। हेलो फनीशा, आप ऑन एयर हैं, बताइए।
1: किया
0: नो, हाय फनीशा, आप ऑन एयर हैं, जवाब बताइए।
1: हाय, इट्स काजोल।
0: काजोल, एंड विच सॉन्ग फ्रॉम काजोल्स मूवी?
1: मूवी क्या थी?
0: नहीं नहीं
1: आई
0: मूवी
1: डोंट
0: नहीं, कोई
1: रिमेम्बर
0: और।
1: दैट।
0: वी आर प्लेइंग अंताक्षरी, तो अब आपको एक और गाना बताना है काजोल की ही मूवी से।
1: ओह अच्छा, तो कुछ कुछ होता है तुम
0: अच्छा
1: पास आई।
0: ओके, मैं प्ले करती हूँ, थैंक यू।
1: ओके।

तो चलो भाई, अंताक्षरी के पहले ही राउंड में मजा आ गया और बिल्कुल सही जवाब आया हमारे पास। काजोल है इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस। अब अगला गाना लेकर के आ रही हूँ। अब आपको इस फिल्म के लीड एक्टर का नाम बताना है जल्दी से कॉल करके, और उसका अगला गाना बताना है मुझे। ऐसे ही करते रहेंगे हम। आप मुझे इस गाने के एक एक्टर के बारे में बताएंगे एंड देन उसकी फिल्म का अगला गाना और फिर उसके को एक्टर के बारे में बताएंगे। तो हम खेल रहे हैं अंताक्षरी फनेशिया 104.9 FM पर। स्टूडियो का नंबर है 9722355555। तो इस फिल्म में हिंट है कि तीन लोग हैं और एक का तो नाम हमें पता ही है, बाकी दो में से किसी का भी नाम बता दीजिए और उसकी फिल्म का एक गाना बता दीजिए।

0: हेलो, आप योर ऑन एयर।
1: हाय,
0: यस, बताइए।
1: शाहरुख खान,
0: शाहरुख खान का एक गाना,
1: देवदास से हमेशा तुमको चाहा।
0: हमेशा तुमको चाहा। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: ओके।

कुछ कुछ होता है शाहरुख खान और काजोल, सही जवाब मिला है मुझे। और अगले गाने की तैयारी कर ली है भाई मैंने, लाइन अप करके रखा हुआ है। तो इस बार फिर से आपको गेस करना है कि इस फिल्म में, फिल्म का नाम क्या है, और साथ ही को स्टार कौन है शाहरुख के साथ, और उनकी फिल्म का एक कोई और एक गाना बताना है हमें। ठीक है, तो फोन उठाइए और कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। और ये रहा अगला गाना।

0: हेलो, बताइए मूवी का नाम
1: मूवी का नाम है देवदास
0: और हु इज द को स्टार।
1: और शाहरुख खान, माधुरी एंड ऐश्वर्या।
0: ओके, सो माधुरी या ऐश्वर्या के नाम का कोई और फिल्म का गाना आप बोलना चाहेंगे?
1: एक तो जॉश मूवी आई थी ऐश्वर्या और शाहरुख की, नहीं?
0: राइट, तो जोश का गाना बजाते हैं अगले।
1: ठीक है।

0: बहुत ही मजा आ रहा है आप लोगों के साथ ये अनोखी अंताक्षरी खेल करके, और आपके कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। चलिए अगला गाना लेकर के आ रही हूँ। हमारे कॉलर ने ऑलरेडी सब बता दिया है, बट आपने अगर अभी सुनना शुरू किया है तो हम अंताक्षरी खेल रहे हैं, जिसमें अभी एक गाना चल रहा था, उस गाने से आपको उस फिल्म का नाम गैस करना है, साथ में ऐश्वर्या राय के कौन को स्टार हैं इस फिल्म में ये बताना है, और को स्टार की फिल्म का एक गाना बता देना है। वेरी सिंपल। सो हियर इज द नेक्स्ट सॉन्ग। कॉल करिए और बताइए मुझे, स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555।
1: कटेगा पल हर पल।

0: आंखों में है। यस यू आर ऑन एयर, बताइए।
1: दिस मूवी इज जोश एंड ऐश्वर्या एंड चंद्रचूड़ सिंह।
0: Yes, and do you know Chandrachur ka any other song that you want to listen to?
1: Yeah, March is there is Chappa Chappa Cherika Chale.
0: Okay, thank you for calling.

ओके, तो अब हो गया है मुकाबला जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि अगला गाना जो है इसमें आपको गेस करना है कि चंद्रचूड़ सिंह की को स्टार कौन थी इसमें, और गाना बताना है उनके फिल्म से। ये रहा अगला गाना।

0: देखते हैं कौन गेस कर पाता है और हमारी अंताक्षरी को आगे बढ़ा पाता है। माचिस फिल्म का है ये गाना, चंद्रचूर के को स्टार को बताना है आपको। को स्टार कौन है? यस यू आर ऑन एयर, बताइए।
1: Yeah, the answer is Tabu.
0: You're absolutely right. Tabu ke film ka koi gaana jo sunna chahenge aap?
1: Koi Andhadhun ka gaana suna dijiye.
0: Andhadhun ka. Thank you.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahun.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
11: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
12: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
11: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
13: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. at 5152 Quadrant Way, Suite 110, Fort Worth, India Bazaar, the People's Store.
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
15: ये तारा वो तारा हर तारा।
16: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
17: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
18: अरे
17: बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
18: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
17: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
18: इंडिया तक।
17: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
16: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
19: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
16: Sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
19: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
20: Of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
2: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे। और गपशप गली में बहुत सारी गपशप हुई और आज हमने अपने लिसनर्स के साथ एक अनोखी अंताक्षरी खेली और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फिर से अगली बार लेकर के आऊंगी। चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पे जाने के पहले एक गाने की फरमाइश आई थी, पहले उसको सुनाते हैं और उसके बाद हमारा गिव अवे टाइम। दो लकी कॉलर्स को मिलेगा सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से एक फेवरेट डोसा उनका और एक फिल्टर कॉफी। तो उसके लिए फोन पे बैठे रहिए, तैयार रहिए, इस गाने के बाद सवाल आएगा।

तो भाई राखी आने वाली है, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और फन एशिया और चौक टॉक कैसिनो रिजॉर्ट ड्यूरेंट आपके लिए कुछ बहुत ही जोरदार लेकर के आ रहे हैं. ऑल दे वॉन्ट इज टू हियर एन अनफॉरगेटेबल मेमोरी विथ योर ब्रदर और सिस्टर. येस, वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिकॉर्ड 1 मिनट वॉइस नोट on WhatsApp and send it to them on 214-837-7147. I repeat, it's 214-837-7147 and you could win a exciting prize. There are daily prizes including dining experiences, entertainment, resort stays and the grand prize, an unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino Resort. Durant. For complete details, check out Phanisha's social media pages, Choctaw Casino and Resort Durant, where unforgettable memories are made together. So you must be 21 or older to participate and the terms and conditions do apply. Please play responsibly. तो चलिए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और अब आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और इस सवाल के बाद मिलेगा आपको क्या, बताइए. आपको तो पता है गिव अवे मिलने वाला है सैनिडली रेस्टोरेंट की तरफ से. जी हाँ, आप यहाँ पर एक डोसा, यू कैन यू हैव अ चांस टू विन वन डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस फिल्टर कॉफी एट सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. इंडियन फूड 100% वेजिटेरियन है, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसाज, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी भी मिलेगी. तो ये आप जीत सकते हैं. जी हाँ, फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद चैन फ्रेंडली ऑप्शन. ऑल यू हैव टू डू इज विजिट सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एट हाईवे 121 एंड कस्टर्ड जंक्शन. तो चलिए फटाफट पूछें आपसे सवाल, जल्दी से कॉल कर, फोन को पहले उठा लीजिए, नंबर डायल कर लीजिए. 972-235-5555 है नंबर और गाना आ रहा है थोड़ा पुराना. ठीक है,

0: आरजू फिल्म का था ये गाना। लगता है सवाल थोड़ा कठिन हो गया, लेकिन हमें फिर भी हमारे विनर मिल गए हैं मिस्टर विकास पटेल। सबसे पहले जोरदार तालियां उनके लिए। विशाख, आई एम सॉरी, विशाख पटेल। तो चलिए अगले गाने की तरफ जल्दी से चलते हैं, क्योंकि एक और गिव अवे बचा है। एक ही विनर मिला है हमें, तो फोन उठाइए, कॉल करिए और बताइए अगले गाने के बारे में, ठीक है? कौन से फिल्म का गाना है? आसान सा गाना प्ले करूंगी ताकि आप जल्दी से बता दें।
1: रीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं।
2: अभी
1: नहीं, शायद कल कहता हूँ। रीना, मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं आज का दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं चलता हूँ।

सो यस, मूवी का नाम है रहना है तेरे दिल में. और हमारे दूसरे विनर भी हमें मिल गए हैं, उनका नाम है कृष्णा जगवाला. उनके लिए जोरदार तालियां. तो यस, आप लोग जाके अपना गिव अवे सैनली रेस्टोरेंट से कलेक्ट कर सकते हैं, विच इज लोकेटेड एट 121 एंड कस्टर. और जल्दी से आपको एक जानकारी दे देती हूँ. जी हाँ, इंडिया का 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा है एट INT's आनंद बाजार 2026 ऑन सैटरडे 15th August from 2 p.m. onwards at Co America Center, Frisco. The best part, it's completely indoors and free for everyone, so you can enjoy Indian food, grand parade, cultural performances, live music, shopping. Bring your family and bring your friends. Be a part of North Texas' biggest Indian Independence Day celebration, INT Anand Bazaar 2026. तो चलिए जाइए और 15 तारीख को enjoy करिए इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. अब वक्त हो रहा है आप लोगों से विदा लेने का. घड़ी में बज गए हैं 12:25 और मेरा आज का समय आप लोगों के साथ ख़त्म हो गया. पर बहुत मज़ा आया, हमने खूब बातें की, अंताक्षरी खेली और काफ़ी सारे कॉल्स आए. मेरे सारे कॉलर्स को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फ़ोन करने के लिए, जवाब देने के लिए मेरे सवालों का, और ऐसे ही मुझसे गप्पे मारने के लिए. बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के कॉल्स आते हैं तो. और आज के लिए विदा ले रही हूँ, कल फिर मिलूंगी सुबह 10 बजे. अगर आप मुझे रेडियो के अलावा भी फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बिहारी मॉम इन अमेरिका, जहाँ पे थोड़ी बहुत डेली व्लॉगिंग, थोड़ी बहुत बकबक, थोड़ी बहुत गपशप होते रहती है, तो फॉलो कर लीजिए. फेसबुक पे भी आयुषी भूषण के नाम से मेरा हैंडल है. एंड फॉर टुडे इतना ही, आज के लिए विदा दीजिए, फिर मिलेंगे कल सुबह 10 बजे गपशप गली में आपकी होस्ट आयुषी के साथ. आज के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओह हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan mummy.
3: Good. Ab chaliye papa, aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
5: वो
2: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
8: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम एक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
9: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
10: भूख लगी
11: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
12: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
15: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

थर्सडे आफ्टरनून का मूड ही अलग होता है. काम चल रहा होता है, एनर्जी थोड़ी लो होती है, बट समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड वीकेंड ऑलरेडी लोडिंग होती है. मैं हूँ स्निग्धा और अगले 2 घंटे हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो आपको थोड़ा सरप्राइज करे, थोड़ा एंटरटेन करे और शायद एक दो बार बोलने पे मजबूर भी करे. आज दुनिया में क्या इंटरेस्टिंग चल रही है, इंटरनेट किस बात पे रिएक्ट कर रही है, हम अपनी ही हैबिट्स को क्यों रिपीट करते हो, और कुछ ऐसे ही कॉन्वर्जेशंस जो रैंडम लगते हैं बट एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं. तो लंच के साथ कंपनी चाहिए, ऑफिस ब्रेक में थोड़ा एस्केप चाहिए, या बस ड्राइव को थोड़ा बेटर बनानी है. स्टे विद मी, दिस इज आफ्टरनून अड्डा विद स्निग्धा ओनली ऑन फनीशिया 104.9 FM पर.

You're listening to the afternoon adda with me, RJ Snigdha, on Phanisha 104.9 FM पर. आपके सपनों की financial journey को smart बनाने के लिए trust कीजिए My Time Equity पर. CPA सुधीर पाई के leadership में My Time Equity आपको help करता है smart investment strategies के साथ, portfolio management, real estate opportunities और alternative investments में. चाहे goal हो long term wealth creation, retirement planning या investment को ग्रो करना, माई टाइम इक्विटी बनाता है सॉल्यूशंस को आपके गोल्स के हिसाब से. आज ही विजिट करें mytimeequity.com या कॉल करिए 4697021272 पर. माई टाइम इक्विटी, स्मार्ट प्लानिंग, स्ट्रॉन्गर फ्यूचर. इट्स एनीवेज थर्सडे, यू हैव वीकेंड टू गो एंड सी दिस थिंग, माई टाइम इक्विटी गाइज.

लेट्स गेट इनटू बातें अब. आपने नोटिस किया है कभी कभी हम किसी का नाम याद करने की कोशिश इतना करते हैं, पूरा दिमाग लगा देते हैं, और वही नाम याद नहीं आता. फिर 20 मिनट बाद जब उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती, ब्रेन कैजुअली बोलता है बाय द वे नाम ये था. और ब्रेन हैज़ अ फनी टाइमिंग प्रॉब्लम आई गेस, क्योंकि मेरी ब्रेन तो हमेशा ऐसी ही होती है. साइकोलॉजिकल की हिसाब से इफ़ आई हैव टू से दिस, जब हम किसी चीज़ को फोर्सफुली रिकॉल करने की कोशिश करते हैं ना, कभी कभी प्रेशर की वजह से ही वो डिफ़िकल्ट हो ही जाता है. इसीलिए इंटरव्यूज़ में भी होता है कि घर पे आंसर रेडी होता है और सामने कैमरा ऑन होते ही ब्रेन बोलता है आज हम अवेलेबल नहीं है. हमारी ब्रेन काफ़ी ब्रिलियंट है, बट थोड़ी अनप्रडिक्टेबल रूममेट भी है. आज ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न और हैबिट्स हम डीकोड करेंगे इन आफ्टरनून अड्डा. Knock, knock, knock, give me, coming, coming. Give me what you got, all your money, money.

इट्स ऑफिशियली लंच टाइम। जब किसी फूड ब्रांड का नाम सुनते ही पुराने यादें और अमेजिंग टेस्ट याद आ जाए, समझ जाए वो है होको। इंडिया का आइकॉनिक फूड ब्रांड अब आ गया है नॉर्थ टेक्सस में। एंजॉय कीजिए उनकी लेजेंडरी चना पूरी, डिलिशियस सैंडविचेस, फ्लेवरफुल करीज और फेमस होको कॉल्ड कोको का ऑथेंटिक टेस्ट। अब इंडिया जाने की वेट नहीं, इंडिया का फेवरेट फ्लेवर अब आपके पास है। विजिट होको एट 2693 Preston Road, Suite 1000, Frisco, Texas 75034। फुल मेन्यू के लिए आप विजिट कर सकते हैं hoco.us। Hoco come hungry, leave with a taste of India. Just taste of India, I am coming Hoco।

मस्त मलंग मस्त मलंग जूम। आजकल इंटरनेट पे एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैंने मस्त मलंग जूम, बिकॉज यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट ऑलवेज। पहले सोशल मीडिया पे सब कुछ परफेक्ट दिखना होता था, परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट कैप्शन, बल्कि परफेक्ट लाइफ भी। अब थोड़ा ऑपोजिट चल रहा है, लेट मी गिव यू दैट अपडेट। लोग ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं रियल मूवमेंट से, इम्परफेक्ट वीडियोस, ऑनेस्ट ओपिनियंस, बिहाइंड द सीन्स वाली चीज़ें। शायद क्योंकि हम सबको पता है कोई भी लाइफ 24/7 हाईलाइट रील तो नहीं होती है। और फनी बात ये है कि जितना हम ऑथेंटिक दिखने की कोशिश करते हैं, कभी कभी उतना ही नेचुरल होना भूल जाते हैं। आप भी नोटिस करते हो ये सब, आपको ज़्यादा पसंद क्या आता है, परफेक्टली मेड कंटेंट या वो रैंडम एंड जेन्युइन मोमेंट्स? आई थिंक रैंडम एंड जेन्युइन मोमेंट्स आर मोर ब्यूटीफुल देन ये परफेक्ट वाला कंटेंट सीन। परफेक्ट के लिए हम ओ लेट्स टेक दिस, लेट्स टेक दैट, बट इफ यू डू समथिंग नेचुरल, आई थिंक इट हैज मोर लव इन इट एंड इट हैज मोर अदर काइंड ऑफ अ लुक ओवर इट व्हेन यू थिंक अबाउट दैट। सो बी नेचुरल एंड स्टे जेन्युइन, यू डोंट हैव टू बी ऑलवेज परफेक्ट इन व्हाटएवर यू डू, इज what I believe in.

0: You are listening to the afternoon adda with me, RJ Snigdha, on Phoenicia 104.9 FM. But now it's the time for my family home loan segment today. So, aaj hamare saath hai Miss Shefali Panjwani ji, a home mortgage expert, जो families को home loan option समझाने और buying process को simple बनाने में आपकी help करती है. आज हम इनसे कुछ common questions पूछने वाले हैं जो home buyer के लिए useful होंगे. Hi Ms. Shefali ji.
1: Good afternoon to all Phoenicia listeners. How are you all doing?
0: We're all good. So we wanted to know, business owners, freelancers और 1099 earners के लिए home loan लेना थोड़ा different होता है. क्यों ऐसा होता है?
1: Different इसलिए होता है कि उनकी salary नहीं होती है. It is a not stable income, 1099 और business owners की. Because they have K-1s or they have a 1099, so that is not stable all year around. और self-employed borrowers जब होते हैं तो उनकी 2 year की income history देखी जाती है to prove their income in a stable manner as per lender guidelines. इसके लिए इनका थोड़ा loan process और program different हो जाता है. जबकि W-2 income borrowers के लिए it's a W-2 is stable income. It's stable. So that is little easy, straightforward, क्योंकि salary में कोई changes नहीं होते हैं. और जब 1099 और self-employed borrowers होते हैं, उनका every year different scenario होता है. So they have to make sure that उनकी income कौन से sources से आ रही है, उनका कुछ प्लस और माइनस है, जैसे दे हैव बॉट द बिजनेसेस और दे हैव सोल्ड एनीथिंग इन द पास्ट 2 years, डिपेंडिंग ऑन उसके बेस पे उनका इनकम कैलकुलेशन किया जाता है. जो यूजुअली क्वालिफाई होते हैं नॉन QM लोन्स के लिए, विच कैन गो टुवर्ड्स ऑल डॉक लोन्स, विच डजंट मेक, लेट्स से इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट मेक्स इट मोर क्रिएटिव टू गेट देम क्वालिफाइड एज पर देयर सिनेरियो. So, इस तरीके से 1099 और सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर्स के लिए लोन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट रहता है और इनकम कैलकुलेशन भी डिफरेंटली किया जाता है एज पर लेंडर गाइडलाइंस.
0: थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन. अगर कोई घर खरीदना सोच रहा है तो सबसे पहले क्या स्टेप होनी चाहिए उनके लिए?
1: सबसे पहले तो दे नीड टू लुक इन टू देयर क्रेडिट प्रोफाइल and have to sit down with a mortgage professional and discuss their scenario, what are they planning, what is their goal, what are they looking into, instead of just go and start looking for the homes. If you go to the real estate agent or if you go to a new construction home builder, the first thing they want to know is if the buyer is serious or is just looking around. So if you have a pre-qualification letter, that makes it strong and that proves that you are a serious buyer, not just surfing around. So first step should be you should contact your mortgage professional and discuss your scenario and go from there. If there is any adjustments or improvement needs to be made before you start looking for the home or investment property. You can reach out to me at 469-734-3338. Also, for purchases and refinance, we have a $2,000 best price guarantee. You can call me and ask me about that. It is valid for purchase and refinance. My number is 469-734-3338.
0: Thank you so much, Ms. Shefali. So here you go, our tracks are ready for you.

You are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigda, on Phanisha 104.9 FM par. So let's talk about ek weird facts ya curiosity wala. Ek interesting cheez maine like notice ki hai. Hum sochte hai ki smell sirf smell hoti hai, but actually smell ka connection memory ke saath bahut strong hoti hai. Isi liye kabhi kisi ka perfume ki smell aati hai aur suddenly aapko koi purani jagah, koi पर्सन या कोई मूमेंट याद आ ही जाती है. आई गेस दिस शुड बी रिलेटेबल, क्योंकि इफ फॉर एग्जाम्पल इफ माई पापा इज़ यूजिंग वन परफ्यूम एंड इफ समबडी इज़ यूजिंग द सेम, आई फील लाइक अरे यार ये तो मेरे पापा भी यूज़ करते हैं. दिस इज़ लाइक आर ब्रेन विच रिएक्ट्स टू इंस्टेंट थिंग्स विच मेक्स अस फील क्लोजर. एक छोटी सी स्मेल और ब्रेन पूरा फ्लैश बैक खोल देती है. शायद इसीलिए कुछ लोगों के लिए चाय की खुशबू सिर्फ चाय नहीं होती है, वो घर का फीलिंग होता है. आपके लिए कौन सी स्मेल इंस्टेंटली मेमोरी एक्टिवेट कर देती है? फ्रेश कॉफ़ी, रेन या घर के खाने की स्मेल? ऐसी ही छोटे मूवमेंट्स के पीछे का साइंस एक्सप्लोर करते ही रहेंगे. स्टे विद मी विद एंड कीप लिसनिंग टू आफ्टरनून अड्डा दैट कंटिन्यूज ऑन फनीशा 104.9 FM पर. एंड लेट मी प्ले द नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू.

You are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Funisha 104.9 FM per. And how is the afternoon going? It's almost Thursday and I hope you are excited for the weekend coming in. Who is not excited for the weekend? I guess sab log weekend ke liye intezaar karte hi rehte. So now let's talk about internet mystery and digital world. Aaj internet ki duniya mein ek interesting phenomenon hai ki द मिस्ट्री ऑफ डिसअपीयरिंग ट्रेंड्स. कभी कोई टॉपिक ओवरनाइट वायरल होती है एंड कभी कोई टॉपिक इज लाइक वायरल होती है बट लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज बट इट डजंट हैव एनी सेंस इन इट. डिस्कशंस, मीम्स और फिर कुछ दिन बाद सडनली गायब. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स की लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट हो गई है बिकॉज एल्गोरिथम्स कंटिन्यूसली नया कंटेंट पुश करता ही रहता है. एक और इंटरेस्टिंग चीज, इंटरनेट पर पुरानी स्टोरीज और मिस्ट्रीज बार बार वापस क्यों आते हैं? क्योंकि देर इज अ रीजन फॉर इट, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन ऑलवेज गोज बैक टू समथिंग दैट इट वॉन्ट्स टू लाइक ओके मुझे ये जानना है. यू कैन नॉट कीप आर ब्रेन्स अनफॉरगॉटन और कंप्लीटली डिसअपियर्ड. डिजिटल दुनिया में भी परमानेंटली लॉस नहीं होता है, बस कभी कभी वो फिर से डिस्कवर होने की वेट करती है. ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉर्नर्स एक्सप्लोर करते हैं बिकॉज इंटरनेट इज वायरल एंड यू नो हम इंस्टाग्राम के बिना नहीं रह सकते, हम टिकटॉक के बिना नहीं रह सकते. एंड इंस्टाग्राम तो अब नया चीज़ भी लेके आ गई है, दैट इज कॉल्ड द थ्रेड्स. सो देर आर सो मेनी न्यू थिंग्स टू एक्सप्लोर ओवर, बट सोशल मीडिया वी हैव टू एक्सप्लोर इट इन अ वे विच इज हेल्पिंग अस, नॉट मेकिंग आर ब्रेन स्ट्रॉमिंग और नॉट मेकिंग अस कीप की बस वहीं पे रुक गए. एक रील खोल लिए, एक रील पे हम कभी नहीं लाइक रुकते, हम 20-30 रील तो देख ही लेते. सो डोंट कीप योर ब्रेन सो मच इनटू द सोशल मीडिया विच विल मेक योर ब्रेन स्टॉर्म. जस्ट कीप इनटू योर ब्रेन्स इन अ गुड वे दैट विल हेल्प यू फॉर अ बेटर लाइफ.

You are listening to the Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, on Phanisha 104.9 FM per. So before the break, I was talking about, did you guys know there is a new update? आपने नोटिस तो किया होगा, साल में दो बार हमारे क्लॉक्स चेंज होती है, एक बार आगे और एक बार पीछे। अभी इसी सिस्टम को लेकर अमेरिका में एक बड़ा चेंज प्रपोज किया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप के सपोर्ट से डेलाइट सेविंग टाइम को परमानेंटली कंटिन्यू करने वाला बिल हाउस पास हो चुकी है। अगर ये फाइनल अप्रूवल के बाद लॉ बन जाता है तो फ्यूचर में क्लॉक चेंज करने की ज़रूरत ख़त्म हो सकती है। सो आने वाले टाइम में हमारे वर्क स्केड्यूल्स और डेली रूटीन्स कैसे चेंज होंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हम आपको इस अपडेट से कनेक्टेड रहेंगे बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज अपडेट। अब फॉल समर दिस एवरीथिंग इज़ गोना बी द सेम गाइज। सो लेट्स होप बिल पास होती है या नहीं।

क्या आपको खबर है आपकी फाइनेंसेस को स्मार्ट और स्ट्रेस फ्री बनाने में आपका ट्रस्टेड पार्टनर एजे फिनटेक्स, अमेरिका की फास्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म में से एक। एजे फिनटेक्स इंडिविजुअल स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के लिए प्रोवाइड करते हैं कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, बुककीपिंग, पेरोल, टैक्स प्लानिंग, कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज। सब कुछ एक ही जगह। अपने फाइनेंस को रखिए ऑर्गेनाइज, कंप्लेंट एंड फ्यूचर रेडी। आज ही कॉल कीजिए 4699429888 या विजिट करिए ajfintechs.com। एजे फिनटेक्स, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर एंड अ ग्रेट फाइनेंशियल फ्यूचर फॉर यू।

This is Afternoon Adda with me, RJ Snigda, on Phanisha 104.9 FM पर. I have something exciting. इस रक्षाबंधन Phanisha Radio और Choctaw Casino and Resort Durand के साथ celebrate कीजिए अपनी special sibling bond को. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी कोई unforgettable memory हमारे साथ share कीजिए और आपकी story आ सकती है live on air. बस call कीजिए, अपनी यादगार कहानी share कीजिए और जीतिए exciting daily prizes including dining experiences, entertainment और resort stays. और सबसे बड़ा मौका विन कीजिए एक unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Resort and Casino Durand. तो देर मत कीजिए, कॉल कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए अपने सिबलिंग के साथ एक स्पेशल मोमेंट. यू कैन कॉल अस एट 972-235-5555 पर.

You are listening to the afternoon adda with me, RJ Snigdha, on Funny Show 104.9 FM पर. चलिए एक क्विक पर्सनालिटी चेक करते हैं. साइकोलॉजी के हिसाब से लोग जनरली डिसीजन लेने के दो कॉमन स्टाइल्स रखते हैं. कुछ लोग पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, प्रोस कॉन्स एनालाइज करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, और कुछ लोग इंस्टेंट और गट फीलिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई एक स्टाइल बेटर नहीं होता है. सिचुएशन के हिसाब से दोनों अप्रोचेस यूजफुल हो सकती है. रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि हमारे डिसीजन सिर्फ लॉजिक से नहीं बनते, इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस और एनवायरमेंटल भी काफी रोल प्ले करती है. तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? दिस इज जस्ट अ फन पर्सनैलिटी चेक. मेरी कैटेगरी तो ये है, जस्ट गो विद द गट फीलिंग, क्योंकि मैंने आज तक कुछ एनालाइज करके मैंने जो भी किया वो ठीक से और ढंग से हो नहीं पाए. बहुत कम चीजें ऐसे हुए जो ढंग से हुए, तो मैं गट फीलिंग के साथ ही चली जाती हूँ. एंड गट फीलिंग, यू नो, इट विल गिव मी अ हैप्पीनेस इन द एंड ऑल्सो, कि ठीक है, अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, बुरा हुआ तो ओके, आई एम लर्निंग फ्रॉम व्हाट आई एम थिंकिंग.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे।
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं।
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं।
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं।
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, your growth, our strategy. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: इस रक्षाबंधन Chalk Talk Casino and Resort Durand के साथ celebrate कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, and a lifetime of unforgettable memories. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार memory हमें 1 minute voice note में भेजिए and win exciting daily prizes including dining experiences, entertainment, resort stays and the grand prize, an unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort Durand. अपनी story WhatsApp कीजिए 214-837-7147 पर या contest details के लिए visit कीजिए Funasia Radio के social media pages.
5: Choctaw Casino and Resort Durand, where unforgettable memories are made together. Must be 21 or older to participate. Terms and conditions apply. Please play responsibly.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये astrologer बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत lucky है।
14: माँ, reels पे सब lucky ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
17: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Park. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
18: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
18: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
18: सच में सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

are listening to the afternoon adda with me RJ Snigdha on Phanisha 104.9 FM par. So reality shows ka maza hi kuch aur hota hai. Drama, emotions aur full on entertainment. Aur lockup season 2 ki baat kare to isne bhi audience ko kafi engage kiya hai. Har contestant ne apna game dikhaya lekin finale mein trophy apne naam ki Shreya Kalra ne. Aapne season follow kiya hai to bataiye aapki हिसाब से कौन था सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट? रियलिटी शोज का असली फन तो है फैंस की ओपिनियन से ही बनती है. आई थिंक माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स वर श्रेया कालरा, क्योंकि वो खुद ही सबको एंटरटेन कर रही थी, बाकी सब अपने ही दुनिया में है. राम जी तो बस अपना खाने की पड़ी है एंड आकांक्षा चमोला, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन शी इज हियर. पैम इज ऑलमोस्ट इनटू हर कंटेंट मेकअप एंड वरुण, आई डोंट नो उसकी पर्सनैलिटी क्या है. शिवांगी एंड हर्षद की तो आपकी पता है एंड Paji, I know she's a little psychotic. So everybody has so many different shades. Which shade did you like from Lockup Season 2? Call me and let me know. Aapko kaun pasand aaya? And are you happy with the winner, Shreya Kalra?

ये ट्रैफिक अपडेट सेगमेंट ब्रॉट टू यू बाय ओमार ख्वाजा। रोड पर एक्सीडेंट सेकंड्स में हो सकते हैं, लेकिन रिकवरी में टाइम लगता है। अगर आप कार क्रैश, ट्रक एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, अटॉर्नी ओमार ख्वाजा आपके लीगल बैटल को हैंडल करेंगे ताकि आप अपनी रिकवरी पर पूरा फोकस कर सकते। केस जीतने तक कोई फी नहीं है। फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल करें 4693005046 या विजिट करें attorneyomar.com। Omar Khwaja, fighting for what you deserve.

0: एक्सपीरियंस कीजिए पीस मेडिटेशन और सोलफुल म्यूजिक के साथ अर्चना दीदी के 3 डे रिट्रीट इन DFW. ज्वाइन कीजिए अगस्त 7 को भारतीय निवास रिचर्डसन में और अगस्त 8 एंड 9 को श्री रघुनाथ टेम्पल प्लेनो और DFW में हिंदू टेम्पल एकता मंदिर इरविंग. एंजॉय कीजिए मेडिटेशन, सोलफुल म्यूजिक और फ्री वेजिटेरियन प्रसाद. सो रजिस्ट्रेशन भूलना ना कीजिए. पहले 30 रजिस्ट्रेशन को मिलेंगे अर्चना दीदी के एक्सक्लूसिव ऑडियोज एंड वीडियोज. एंड कीप लिसनिंग टू मी. थैंक यू.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
3: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर. उमर ख्वाजा.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
3: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
3: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
10: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th from 9 a.m. to 10 a.m. at 5152 Quadrant Way, Suite 110 Fort Worth, India Bazaar, the People's Store.
11: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
3: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं.
11: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
3: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
11: इंडिया तक.
3: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
6: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही manage कर लेंगे.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Experience peace, music and meditation with Archana Didi at a free 3-day retreat in DFW. Join us on August 7th at Bharatiya Nivas in Richardson, August 8th and 9th morning at Sri Raghunath Temple in Plano, and August 8th evening at DFW Hindu Temple, Ekta Mandir in Irving. Enjoy meditation, soulful music and free vegetarian prasad.
6: Proudly supported by Roma Pithadia, Shri Vimal, Shankar Vilas, Payal Dance Class, Rajula's Kitchen, Fun Pizza Kitchen, Raghunath Temple, DFW Temple and Fun Asia.
15: Register free now at meditation.funasia.net.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Funisha Radio सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with the सुनहरी किरण. Monday through Friday यानी कि सारे weekdays आपके साथ रहती हूं, आपके afternoon drive time को बनाती हूं संगीत भरा, music भरा, और उसके साथ लेकर आती हूं बहुत सारे मुख्तलिफ flavors. Every day we have a new flavor. और आज है जी first Thursday of the month, और आप जानते हैं कि first Thursday of the month को आपके लिए आता है सुनहरी किरण पे फूड जंक्शन. हम बात करेंगे आज एक ऐसे शहर की जहां हम जब एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो हमें वहां क्या खाना चाहिए, और लोकल फेवरेट्स क्या हैं वहां की, इंटरनेशनल फेवरेट्स क्या हैं, देसी फेवरेट्स क्या हैं, सब कुछ और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ म्यूजिक आपके लिए लाइंड अप है. बट दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 PM टिल 4:30 PM. इस वक्त ये जो आधा घंटा है जो हम बाकी दिनों में करते हैं वो 90s का बॉलीवुड, वही फ्लेवर आपके लिए इस आधे घंटे चलेगा. दिस इज वो 90s Bollywood right here on your afternoon drive time with Suneri Kiran. Stay tuned and thank you for connecting.

जी हाँ, सुन रहे थे आप ये गाना फ्रॉम द मूवी खुद्दार, जिसमें हमें नजर आए थे जी गोविंदा और साथ करिश्मा कपूर। और अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे, हम गोविंदा की कुछ हमने बात की कि द टॉप हीरोज जो 90s के थे, द बैंकेबल हीरोज थे, उनमें गोविंदा का नाम था। और उनकी कॉमेडी फिल्में बहुत ज्यादा हिट हुई, लेकिन मुझे उनकी कुछ सीरियस फिल्में भी बहुत ज्यादा पसंद थी, जिनमें से एक थी खुद्दार और एक थी स्पेशली शोला और शबनम। आई एब्सोल्यूटली लव्ड दैट मूवी। तो जी, ये चल रहा है हमारा 90s का बॉलीवुड, लेकिन आज हम 3 बजे इसको रैपअप करेंगे, बिकॉज 3 to 4:30 आई विल ब्रिंग यू फूड जंक्शन। तो अगला गाना प्ले करते हुए आपको बताएं, दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट टैक्स और अकाउंटिंग फर्म्स हैं जी, जो ग्रो कर रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। चाहे आप इंडिविजुअल हो, या फिर आपने कोई स्टार्टअप खोल रखा हो, या फिर आपके पास कोई एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हो, एजी फिनटैक्स आपको ऑफर करता है इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, जो आपकी नीड्स और आपकी रिक्वायरमेंट्स के इर्द गिर्द टेलर किया जाता है। फ्रॉम बुककीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशंस, टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और साथ ही साथ बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प यू कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज, कंप्लायंट एज वेल एज फ्यूचर रेडी। सो बनाइए एजी फिनटेक्स को अपनी सक्सेस का पार्टनर, मेक देम योर पार्टनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर। गिव देम अ कॉल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स। ये बात सुन के आपके जहन में कोई सवाल उभरा तो उसका जवाब आप एजी फिनटेक्स से लीजिए बाय कॉलिंग देम एट 469-942-9888। 469-942-9888 इज दैट नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, विच इज AG Fintax, FINTAX, AG Fintax.com।

पत्थर के फूल से सुन रहे थे आप ये गाना सलमान खान एंड रवीना टंडन. रवीना टंडन की ये पहली फिल्म थी और सलमान खान उस जमाने में मशहूर थे कि जी जिस भी अक्सर वो नई हीरोइंस के साथ काम करते थे और जब भी वो किसी नई फिल्म में नई हीरोइन के साथ काम करते थे वो सुपर हिट हो जाती थी फिल्म और उन हीरोइंस को ओवरनाइट मिल जाती थी सक्सेस. हर बहुत सारी हीरोइंस के साथ जैसे नगमा हुई, चांदनी हुई, रवीना टंडन हुई, यही कहानी दोहराई गई. तो 90s के बॉलीवुड का एक छोटा सा किस्सा ये भी. और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने पीसीपी के पास जाते हैं, तो हमारा दिल होता है कि कोई हमें डॉक्टर जो आते हैं कमरे में वो हमें बैठ के सुने, हमारी थोड़ा सा हमें टाइम दें, हमारी मसला सुन लें कि भाई मसला क्या है हमारी ज़िंदगी में. तो ऐसा कई बार आपका डॉक्टर 5 मिनट आता है, दे कम इन, दे गो, दे जस्ट लुक एट यू एंड समटाइम्स दे लीव कि भाई मैं इतनी देर इंतज़ार किया तो अभी ये क्या हुआ. तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. हर अपॉइंटमेंट 30 मिनट्स के लिए बुक की जाती है एंड 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक टू कंप्लीट योर एनुअल फिजिकल एग्जाम. एंजाइटी केयर आपको चाहिए, फाइब्रोस्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हैं आपके, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग आपने करानी है या फिर और भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज हेयर टू हेल्प यू. दे ट्रीट यू एज अ फैमिली एंड दे विल स्पेंड दैट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ कंसर्न्स. तो अपनी अपॉइंटमेंट आप आज ही बुक करा सकते हैं बाय कॉलिंग पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर at this number. The number is 214-666-6259. Unka number hai. This is Passion Health Primary Care. They are very passionate about taking care of you. So all you have to do is be a little passionate about yourself, your health, and give them a call and book your appointment.

ऑल राइट जी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से सुन रहे थे आप ये गाना। 90s के दौर की बात हो और चंद फिल्मों का जिक्र ना हो, उनमें है एक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे आपको बताऊं कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जब कॉन्सेप्ट आदित्य चोपड़ा क्रिएट कर रहे थे तो उनका ख्याल था कि ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इट वॉज बेस्ड इन यूके या लंदन की सेटिंग और कोई बाहर के रहने वाले, तो उनका प्लान था कि किसी हॉलीवुड के एक्टर को हायर किया जाए एंड मेक दैट एक्टर फॉल इन लव विद सिमरन। सो बाद में इस आइडिया को कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी उनकी अपनी टीम से नहीं मिली और उन्होंने कहा कि वो कनेक्शन जो ऑडियंस बनाती है वो लूज़ कर देगी, और उसके बाद सैफ अली खान के नाम को कंसिडर किया गया, बट फिर जो है वो शाहरुख खान को एंट्री दी गई। आई थिंक यश चोपड़ा वॉज द मेन रीज़न कि शाहरुख खान इस फिल्म में आए, क्योंकि यश चोपड़ा का उस वक्त तक शाहरुख खान के साथ एक बहुत अच्छा रेपो बन चुका था। डर और बाजीगर से शाहरुख खान इस्टेब्लिश हो चुके थे और यश चोपड़ा के साथ उनकी एक बॉन्डिंग बन चुकी थी। तो इनिशियली शाहरुख खान ने इस रोल को करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका ख्याल था कि दिस इज टू मुशी फॉर मी एंड आई वांट टू डू समथिंग लाइक डर एंड बाजीगर, बट यश चोपड़ा कन्विंस्ड हिम दैट यू नो यू आर गोइंग टू डू अ गुड जॉब, आप मुझ पे ट्रस्ट करें, एंड दैट्स व्हेन शाहरुख खान ट्रस्टेड द बिग बॉस एंड डिड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एंड देन द रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। ये था दिलवाले दुल्हनिया के बारे में एक छोटा सा किस्सा, और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं जी कि इंडिया की इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कीजिए IANT आनंद बाजार 2026 के साथ। सैटरडे अगस्त 15 को 2 बजे दोपहर से ऑनवर्ड्स ये इवेंट शुरू हो जाएगा एट कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि 2 बजे तो बहुत गर्मी होगी क्योंकि दिस इज एन इंडोर इवेंट एंड एवरीवन इज फ्री, इन्वाइटेड फ्री, बिल्कुल कोई एंट्री पास नहीं है, कोई टिकट नहीं है। सो आइए इंजॉय कीजिए ऑथेंटिक इंडियन फूड, ग्रैंड परेड होगी, कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगे, लाइव म्यूजिक होगा, शॉपिंग की अगर आप दीवाने हैं तो दीवानी है अगर या दीवाने हैं तो डेफिनेटली शॉपिंग का बहुत ज्यादा इंतजाम है वहां पे। अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ आइए एंड बी अ पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सास बिगेस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। दिस इज IANT आनंद बाजार 2026। और ये अगला गाना, एक और हम अभी गोविंदा की बात कर रहे थे कि कुछ सीरियस फिल्में मुझे गोविंदा की बहुत ज्यादा पसंद थी, और अभी मुझे राम साहब थैंक यू सो मच कॉल करके मुझे एक और सीरियस उनकी फिल्म याद दिलाने के लिए जिसका नाम था हत्या। गोविंदा और नीलम हमें इसमें नजर आई और एक बच्चा एक मर्डर होता हुआ, मुझे इसकी कहानी पूरी याद है, एक बच्चा एक मर्डर होता हुआ देख लेता है और फिर क्या होता है, यही है इस फिल्म हत्या की कहानी।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: Ocho.
6: It's Hoko.
7: अरे बस भी करो यार.
8: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
7: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
9: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
10: ये तारा वो तारा हर तारा.
11: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
12: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
12: कहाँ.
14: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D5, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
0: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
15: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
14: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
15: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
16: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
17: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
18: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.
2: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. और वक्त आ चला है जी, आज है the first Thursday of the month, August का महीना, और first Thursday को लेकर आती हूँ आपके लिए Food Junction, जहाँ हम जाते हैं एक नए शहर और बात करते हैं कि वहाँ पे क्या खाना है, local favourites as a tourist जब हम जाएं तो हमें क्या खाना चाहिए, वहाँ के देसी favourites क्या है, international cuisine क्या है, everything we talk about right here on Food Junction. And today we are talking about Singapore, episode 2. This is the food capital of Asia. Welcome to Food Junction.

जी हाँ, फूड जंक्शन में एक बार फिर आपको करती हूँ वेलकम. और बात हो रही है आज सिंगापुर की, द फूड कैपिटल ऑफ एशिया. बेशक ये मुल्क जो है वो छोटा है, इट्स अ स्मॉल कंट्री, बट इट इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ एशियाज ग्रेटेस्ट फूड डेस्टिनेशंस. और जी पिछले हफ्ते हमने थोड़ा सा जो बात की थी उसका रिकैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं. बताया था मैंने आपको कि सिंगापुर की जो कुजीन है वो रिफ्लेक्ट करती है फाइव मेजर इन्फ्लुएंसेस को मिलाकर बनी है सिंगापुर की कुजीन, विच इज चाइनीज, माले, इंडियन, पेरानकन एज वेल एज इंटरनेशनल कुजीन. हमने ये भी डिस्कवर किया इस सारी जर्नी में जो पिछले हफ्ते हमने की कि फ्रॉम हम्बल हॉकर स्टॉल्स टू लग्जूरियस फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, एवरी मील इन सिंगापुर टेल्स अ स्टोरी ऑफ कल्चर, हेरिटेज एज वेल एज कम्युनिटी. साथ ही साथ हमने डिस्कवर किए उनके लोकल फेवरेट्स. बड़ी डिटेल में हमने उनके लोकल फेवरेट्स की बात की थी कि क्या क्या वहां पे खाया जाता है, स्पेशली द वर्ल्ड फेमस चिली क्रैब, द कम्फर्टिंग हेननीज चिकन राइस, द रिच एंड स्पाइसी लक्सा, स्मोकी साते, फ्लेवरफुल चार क्वेटियो. अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करके करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे बिल्कुल उनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी आती. और उनका बहुत ही फेमस नासी लेमक, ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली फेवरेट डिशेस हैं सिंगापुर की मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी की. सारों के बारे में हमने बात की हमारी जर्नी में, हम आगे बढ़े एंड इट टुक अस थ्रू सिंगापुर्स लेजेंडरी हॉकर सेंटर्स, जहां हमने डिलिशियस अफोर्डेबल फूड की बात की जो कि लोगों के लिए हर तरह की वॉक ऑफ लाइफ के लिए, जो लोग हैं जिनके पास, जो रिच हैं, जो टू रिच नहीं है, हर बंदा वहां पे जाके खाना अफोर्ड कर सकता है. और बेहतरीन खाना, वही जायका, कोई वो बड़ा छोटा नहीं है जी. द हॉकर्स आर देयर फॉर एवरीवन. उसके साथ साथ हमने कुछ बेहतरीन स्पॉट्स भी देखे जो जहां पे आपको बेहतरीन हॉकर्स का मतलब बेहतरीन हॉकर्स मिलेंगे और क्या आपको खाना चाहिए वहां पे. दिस ऑल वी टॉक्ड अबाउट लास्ट वीक. उसके साथ साथ हमने बात की थी द बेस्ट कैफेज इन सिंगापुर, जिनमें हमने लोकल फेवरेट्स की बात की थी कि लोकली वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कहाँ जाना चाहते हैं, टूरिस्ट का के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर कौन से कैफेज हैं, और सो ऑन सो फॉर. अब जब हम आज की जर्नी स्टार्ट करें, एक्चुअली लेट्स मूव ऑन टू दिस सॉन्ग, और जब हम वापस आएंगे तो हम आज की जर्नी में बात करेंगे स्वीट सिंगापुर की, यानी कि डिजर्ट्स दैट यू मस्ट ट्राई, उसके साथ उनके वेजिटेरियन फेवरेट्स, उसके साथ उनके देसी फेवरेट्स. आई हैव सो मच मोर लाइंड अप फॉर यू, स्टे ट्यून्ड. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण, फूड जंक्शन.

जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं द स्वीट सिंगापुर की, यानी कि डिजर्ट्स जो आपको सिंगापुर में ज़रूर ट्राई करने चाहिए. इन सिंगापुर डिजर्ट्स जो हैं वो खाली ये नहीं कि अब खाना ख़त्म हो गया तो अब हमें डिजर्ट खाना है. दे आर एक्चुअली अ फुल एक्सपीरियंस. चाहे आप यू नो यू वॉन्ट टू कूल डाउन इन द ट्रॉपिकल हीट, या फिर आप इंजॉय करना चाहते हैं लेट नाइट ट्रीट विद एट द हॉकर्स सेंटर, या फिर आप सिंगापुर की स्वीट ऑफरिंग्स उनकी दुकानों पर उनके रेस्टोरेंट्स में ट्राई करना चाहते हैं. इट इज सो कलरफुल, इट इज सो रिफ्रेशिंग, एंड इट इज आई टेल यू सो फुल ऑफ कैरेक्टर. मतलब देख के आपको लगता है कि कुछ है, मतलब बड़ा ही मजे का. तो लेट्स बिगिन कि वहां के जब आप सिंगापुर जाएं, देखिए गर्मी का आलम तो वहां हम सभी जानते हैं, तो जब आप सिंगापुर जाएं तो आपको कौन से डिजर्ट्स तो मस्ट ट्राई करने चाहिए. इनमें जो नंबर वन पे आता है, या आप कह लीजिए टॉप लिस्ट में आपको बता रही हूं, उसमें वन इज आइस कचैंग, जिसे कहते हैं द रेनबो डिजर्ट. अब इसमें क्या होता है कि ये कंसिडर किया जाता है सिंगापुर का सबसे आइकॉनिक डिजर्ट. इट स्टार्ट्स विद अ टॉल माउंड ऑफ फाइनली शेव्ड आइस ड्रेंच्ड इन ब्राइट सिरप्स, जो मतलब यू नो उसके ऊपर कलर वो डाले जाते हैं सिरप, जैसे हमारा गोला गंडा. मैं इसको पढ़ के मैंने कहा तो हमारा गोला गंडा जैसे होता है कि हमारी शेव होती है आइस के ऊपर, डिफरेंट हम रू अफजा डालते हैं और फला जूस डालते हैं और फला जूस डालते हैं, तो ये भी वही करते हैं. और उसके साथ यूल फाइंड स्वीट कॉर्न, या फिर वो रेड बीन्स डाल देते हैं, या ग्रास जेली, या फिर जेली क्यूब्स डाल देते हैं और बना देते हैं उसको एक बड़ा ही मतलब आप कह लीजिए मिशेलिन स्टार काइंड ऑफ गोला गंडा बन जाता है. दिस इज कॉल्ड आइस कचैंग, जो रेनबो डिजर्ट कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजर्ट्स इन सिंगापुर. इसी के साथ ये जो है इट्स लाइक मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक रेनबो बोल होता है, कूल स्वीट एंड ऑफकोर्स परफेक्ट फॉर सिंगापुर सनी डे. एक और जो वहां का बहुत ही क्लासिक डिजर्ट है उसे कहते हैं शेंडोल, CHENDOL. दिस इज अ क्रीमी क्लासिक, इट इज अ बिलव्ड साउथ ईस्ट एशियन डिजर्ट, जिसे एक बार फिर शेव्ड आइस के साथ बनाया जाता है. कोकोनट मिल्क इसमें डाला जाता है, पैंडन कलर्ड ग्रीन जेली नूडल्स डाले जाते हैं और थिक पाम शुगर सिरप डाला जाता है और बन जाता है ये क्रीमी फ्रेग्रेंट एज वेल एज डीपली सैटिस्फाइंग. अनदर डिजर्ट, अभी अभी दो तीन डिजर्ट्स और मेरे पास लाइंड अप है, लेकिन पहले हम इस गाने की तरफ जाएंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी और आपको दो मेजर डिजर्ट्स क्या खाने हैं जब आप सिंगापुर में हो, जिसके बगैर आपका ट्रिप हरगिज़ पूरा नहीं होगा इफ यू आर विजिटिंग सिंगापुर.

अच्छा जी, आइस कचेंग और द रेनबो डिजर्ट और शेंडोल यानी कि द क्रीमी डिजर्ट के बाद जो अगली डिजर्ट आपको सिंगापुर में जरूर खानी है वो है काया टोस्ट. वाइल नॉट अ डिजर्ट इन द ट्रेडिशनल सेंस, काया टोस्ट इज अ स्वीट ब्रेकफास्ट स्टेपल. क्रिस्पी टोस्टेड ब्रेड होती है लेयर्ड विद बटर एंड काया. काया जो है वो एक जैम है जी, कोकोनट एंड एग जैम का मिक्सचर सा बनाया जाता है, सर्व्ड अलोंगसाइड सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स एंड स्ट्रॉन्ग लोकल कॉफी या फिर टी. तो मतलब चूंकि वो मीठा होता है तो कुछ लोग उसे खाने के बाद भी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग उसे खाली जो है वो दिन के किसी भी टाइम एज अ डिजर्ट खाना पसंद करते हैं. जैसे हम जब कहीं जाएं तो ऐसे ही वॉफल खाने का दिल कर रहा होता है तो वॉफल और फ्रूट्स डाल के खा लिया. सो दैट इज हाउ आई थिंक दिस काया टोस्ट वर्क्स. एंड देन अनदर डिजर्ट दैट इज वेरी वेरी फेवरेट एंड इट इज यूजली कंसिडर्ड अ वेरी बोल्ड चॉइस इज ड्यूरियन डिजर्ट. ड्यूरियन जिसे किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम जैसे क्यों किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है. इट इज ऑफकोर्स फेमस फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग अरोमा और क्रीमी टेक्स्चर. कई लोगों से तो ड्यूरियन फ्रूट की जो अरोमा है, या आप स्पेल कह लीजिए, वो बर्दाश्त ही नहीं होती, हैंडल ही नहीं होती. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ वेरी बोल्ड चॉइस. बट सम पीपल रियली लव द यू नो द ड्यूरियन फ्रूट. और ये बनाया जाता है, इससे ही इसको कहते हैं कि सही सिंगापुरियन एक्सपीरियंस. अगर आपने लेना है तो ड्यूरियन डिजर्ट आपको खानी पड़ेगी. यू विल फाइंड इट इन आइसक्रीम, केक्स, पेस्ट्रीज एंड मूजेस, ये जो ड्यूरियन का इस्तेमाल होता है. तो ये आप जरूर ड्यूरियन की कोई डिजर्ट ट्राई कीजिए, चाहे आइसक्रीम खा लीजिए, केक खा लीजिए, पेस्ट्री खा लीजिए, मूज खा लीजिए. सो यू डोंट जस्ट ईट ड्यूरियन, यू ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस इट एंड इट विल बी रियली फन टू एक्सपीरियंस दिस थिंग. सो डिजर्ट के बारे में जो हम बात कर रहे थे, कलरफुल शेप्ड आइसक्रीम ले लीजिए, आइस ले लीजिए, सॉरी, टू रिच कोकोनट डिजर्ट्स ले लीजिए, टू बोल्ड ट्रॉपिकल फ्लेवर्स ले लीजिए. सिंगापुर का जो स्वीट साइड है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है और स्पेशली जिस तरह की गर्मी सिंगापुर में पड़ती है उसमें ये डिजर्ट खाए बगैर और खासतौर पर ठंडा मीठा खाए बगैर मुझे नहीं लगता कि सही चैन मिलता होगा. सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले गाने की तरफ. व्हेन यू कम बैक वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रीट फूड एडवेंचर्स इन सिंगापुर. सिंगापुर जैसी जगहें, मैंने आपको हॉकर्स के बारे में इनका बताया था. स्ट्रीट फूड और हॉकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं इन मुल्कों में और इनके खाने और इनकी कुजींस में. सो वी आर गोना टॉक अबाउट द स्ट्रीट फूड एडवेंचर्स राइट आफ्टर दिस.

स्ट्रीट फूड एडवेंचर्स ऑफ सिंगापुर. अब हम करने वाले हैं बात जी सिंगापुर का जो स्ट्रीट फूड कल्चर है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक इन द वर्ल्ड. और नॉट जस्ट ये कि इनक्रेडिबल फ्लेवर्स होते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि एक्सेप्शनली क्लीन होता है. ये सेफ्टी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब हर तरह के जो टॉप नॉच स्टैंडर्ड्स हैं उनको नज़र में रखा जाता है स्ट्रीट फूड्स ऑफ सिंगापुर पे. यहाँ पे स्ट्रीट फूड का मतलब केओस नहीं है. जैसे हम जाते हैं ना सड़क के किनारे लगे हैं खाने, कोई चल रहा है कोई नहीं चल रहा, कोई ऊपर मतलब गंद मचा हुआ है, एक अजीब सा आलम रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है सिंगापुर में. देयर इज नो केओस. इट मीन्स यहाँ पे स्ट्रीट फूड का मतलब है वेल मैनेज्ड हॉकर स्टॉल्स सर्विंग वर्ल्ड क्लास मील एट अफोर्डेबल प्राइसेस. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टर्म हमने यूज की वो है अफोर्डेबल प्राइसेस. हर बंदा अफोर्ड कर सकता है इस स्ट्रीट फूड को. चाहे आप इवनिंग की फॉल्स हो या हॉकर सेंटर्स आप जाना चाहते हो टू ईट सिजलिंग वोक स्मोकी ग्रिल्स, लॉन्ग क्यूज आपको मिलेंगी, लोकल्स वेट कर रहे होंगे, मेरे और आप जैसे टूरिस्ट वेट कर रहे होंगे उन लाइनों में. और हमारा मकसद या आप कह लीजिए जो मोटिव है वो एक ही है, to experience the brilliance of the Singaporean street food, the hawker foods, and experience the social experience.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Mere kal wale khane mein dosa, aane wale khane mein dosa.
2: Kya aapko bhi hamesha dosa ki cravings rehti hai ya fir authentic veg khane ki talash? Your search ends here.
4: Pan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
2: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
10: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
11: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
12: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
13: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
14: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
13: Fear not. We have the perfect solution.
15: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new Weekend Lunch Buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
16: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
17: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750, call 214-529-3257.
16: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
18: Dallas ki dhadkan 104.9 FM. Funisia Radio.

Your dream home may be closer to you than you think with Dream Home Mortgage. जी हाँ, 1998 से Dream Home Mortgage help कर रहे हैं families को across the country to achieve their home ownership dream and make it into a reality. Personalized mortgage solutions आपके लिए create करते हैं. The process is extremely smooth as well as stress-free. They are licensed in all 50 states. Experienced team उनकी मौजूद है जो committed है आपके लिए right loan options find करती है which are tailored around your needs. तो चाहे आप first time home buyer हो, consolidate करना चाहते हो अपनी debt, you're upgrading, you want to buy a new home, whatever your goal is, Dream Home Mortgage can help you achieve that. Call them. 972-245-5626 972-245-5626 उनका नंबर है जी, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए dreamhomemortgage.com. और आई एम वेलकमिंग यू बैक, यू ट्यून्ड इनटू फूड जंक्शन राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और बात हो रही है सिंगापुर की, और वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट द स्ट्रीट फूड ऑफ सिंगापुर. और स्ट्रीट फूड जब आप सिंगापुर में खाते हैं तो आप टॉप जो है टॉप नंबर पे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर खानी चाहिए, उनमें सबसे पहले आता है साते. दिस इज ग्रिल्ड स्क्यूअर्स ऑफ मैरिनेटेड मीट जो सर्व किया जाता है विद रिच पीनट सॉस, क्यूकम्बर्स और राइस केक्स के साथ. दिस इज स्मोकी, जूसी एंड परफेक्ट फॉर शेयरिंग. इसके अलावा एक और चीज़ जो स्ट्रीट फूड के तौर पे बहुत मशहूर है सिंगापुर में, दैट इज लक्सा. ये एक कोकोनट करी नूडल सूप है विच इज पैक्ड विद प्रॉन एंड फिश केक एंड हर्ब्स, और बोल्ड क्रीमी एंड कम्फर्टिंग फ्लेवर्स हैं इसके. हर नवाले में आपको मतलब कंफर्ट, और स्पेशली जब ठंड के मौसम में कभी हल्की सी अगर ठंडक हो तो बहुत मज़ा आता है इसको खा के. उसके साथ साथ अनदर स्ट्रीट फूड विच इज़ वेरी वेरी फेवरेट इज़ फ्राइड कैरेट केक. ऑल्दो नाम से ऐसा लगता है कि जैसे ये डिज़र्ट होगा, लेकिन ये बिल्कुल डिज़र्ट नहीं है. इट्स अ सेवरी डिश जिसे बनाया जाता है फ्रॉम रेडिश केक स्टर फ्राइड विद एग्स, गार्लिक एज वेल एज सोया सॉस. तो ये क्रिस्पी होता है बाहर से, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है. और मतलब आप खा के, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसको खा के शायद हैश ब्राउन्स का सा फ्लेवर आता हो, आई डोंट नो, मैंने कभी खाया नहीं है, बट इट विल बी फन टू ईट इट. सो उसके अलावा अनदर वेरी पॉपुलर स्ट्रीट फूड दैट यू मस्ट ईट इफ यू आर इन सिंगापुर एंड वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ सिंगापुर इज हॉकियन मी. दिस इज अ फ्लेवरफुल नूडल डिश स्टर फ्राइड विद प्रॉन्स, स्क्विड एज वेल एज रिच सी फूड स्टॉक, और ऊपर से संबल चिली इसमें डाली जाती है, यानी कि स्पाइस अप करने के लिए, वो कह लीजिए एक्स्ट्रा किक के लिए इसमें थोड़ी सी ये मिर्च डाली जाती है. एंड इट जस्ट टर्न्स वेरी डिलिशियस अकॉर्डिंग टू द रिव्यूज़ दैट आई हैव बीन. ये सारे जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं उसमें से मैं ये डिशों के नाम आपके लिए निकाल कर, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, चाहे वो लोकल्स हों चाहे वो टूरिस्ट हों. एक और चीज़ जो लोकल जो स्ट्रीट फूड में बहुत ज़्यादा मशहूर है सिंगापुर में, दैट इज़ रोजक. This is a sweet, spicy and tangy salad. Fruits, vegetables, dried dough or thick shrimp paste ki dressing ke saath ise banaya jata hai. And this is, according to them, a true flavor explosion in your mouth. So it'll be interesting to eat that. Ya phir ek aur cheez jo bahut zyada mashhoor hai, agar aap street foods kha rahe hain, to fish balls. To ye hai ji simple yet satisfying springy fish balls jo ke serve ki jati hain soup mein या फिर स्क्यूअर्स में, और ऑफन इसे जो है वो हॉकर स्टॉल पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आप देखेंगे इसके बन रहे हैं. लोग स्टिक्स पे लेके जा रहे हैं, सूप पे लेके जा रहे हैं, जिस भी तरह खाना पसंद करते हैं वैसे. सो दिस इज़ द जर्नी ऑफ सिंगापुर. फूड जंक्शन में हमने अब बात करी स्ट्रीट फूड की. अब जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट स्ट्रीट फूड आपको किन जगहों पे मिला. मतलब स्ट्रीट फूड तो हर जगह है, इतना ज़्यादा पॉपुलर है स्ट्रीट फूड, लेकिन बेहतरीन स्ट्रीट फूड अकॉर्डिंग टू टूरिस्ट एज वेल एज अकॉर्डिंग टू लोकल्स कौन सी जगहें हैं. सो दैट वन आफ्टर दिस सॉन्ग.

अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल डीलिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी, द पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, और साथ ही साथ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, योर मेंटल एंड फिजिकल वेल बींग. तो आप अपना ख्याल रखिए एंड लेट अटर्नी उमर ख्वाजा handle the rest for you. He and his team will not only fight your case for you, they will help you get the best compensation that you deserve. And the best part is ki aapko kuch pay nahi karna jab tak ki aap ye case jeet nahi jate. So it is a win-win situation for you in this stressful time. Aap zarur call kijiye free consultation ke liye. Attorney Umar Khwaja ka number note kar lijiye. That number is 469-300-5046 469-300-5046. या फिर उनकी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं, अटर्नी उमर OMAR attorneyomar.com पे लॉग ऑन कीजिए एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम और बुक योर कंसल्टेशन. इसी के साथ वी आर फूड जंक्शन में हम सिंगापुर की बात कर रहे हैं और मैं आपको इस गाने पे जाते हुए बता रही थी कि बेस्ट जगहें कौन सी हैं एज अ टूरिस्ट जब हम जाएं तो हमें स्ट्रीट फूड अगर खाना हो. सबसे पहले जो नाम बार बार रिव्यूज में आता है वो है जी मैक्सवेल फूड सेंटर. दिस इज एक्सट्रीमली फेमस फॉर देयर चिकन राइस, देयर सातेज एंड देयर रिफ्रेशिंग डिजर्ट्स. Another name that comes a lot in discussions is Lopa Sat. This is a nighttime hotspot, इसे कहा जाता है, जहाँ पे साटे स्ट्रीट जो है वो बनाई जाती है, मतलब है वहाँ पे मौजूद, और ऐसा लगता है जैसे ओपन एयर फीस चल रहा है, मतलब चारों तरफ बारबेक्यू और साटे की खुशबू आ रही होती है. Another very important और most reviewed place जो कि street food के लिए बेहतरीन मानी जाती है, that is Old Airport Road Food Center. ये local favorite माना जाता है, known for authentic, no frill hawker classics. तो अगर मैं हूं जब जाऊं तो मेरा ख्याल है ये ओल्ड एयरपोर्ट फूड सेंटर पे जरूर विजिट किए, क्योंकि जहां पे लोकल फेवरेट्स होते हैं वहां पे आपको प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल मिलती हैं और दूसरे ये के फ्लेवर्स भी बहुत ऑथेंटिक मिलते हैं. सो इन सिंगापुर स्ट्रीट फूड इज़न्ट जस्ट व्हाट यू ईट, इट्स समथिंग दैट यू एक्सपीरियंस. हर डिश अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक सिंगल प्लेट में आपको बहुत कुछ मिलता है उस मुल्क और उस शहर के बारे में जानने के लिए. सो आफ्टर दिस सॉन्ग व्हेन वी कम बैक आई एम गोइंग टू टेल यू फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस इन सिंगापुर एंड देन वी विल टॉक अबाउट द देसी फ्लेवर्स के बहुत. अगर आप तो मतलब थक जाते हैं जब हम खाना खा के बाहर का, तो हमारा दिल करता है अब कुछ देसी मिल जाए, कुछ अपना कुछ यू नो साउथ एशियन, हमारे इंडियन पाकिस्तानी फ्लेवर्स मिल जाए. तो वो फ्लेवर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वो भी और बहुत कुछ, राइट हियर, स्टे ट्यून्ड.

0: याद हो गए।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
8: Call 857-891-8942 today.
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल। हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
8: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
11: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
8: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
12: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
14: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
13: कैसे?
14: पेज 3 ईटरी?
13: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
14: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
13: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
15: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
16: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
16: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
16: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
16: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
18: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
0: यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
8: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम 9191 काइज़रवे स्वीट 205 फ्रिस्को।
18: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
8: कॉल नाउ टू 833 गेट ओमर, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।

ब्रेक पे जाते हुए आपके लिए गिव अवे लेकर आई थी चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन की तरफ से $10 ऑफ योर डाइनिंग बिल ऑफ $50. आपने अपने सिंगापुरियन एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हमारे तीनों कॉलर्स जिन्होंने हमारे साथ कुछ बहुत ही जबरदस्त इनसाइट शेयर की. विनर एक ही है जी, और जो है उनका नाम मैथ के फॉर्मूले से निकल आया है. और हमारे आज के विनर हैं नवीन वसनानी. नवीन, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे $10 ऑफ योर $50 बिल एट चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए. एंड देन यू विल हैव 6 to 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड रीडीम और अवेल योर गिव अवे. सो एंड ऑल ऑफ यू द अदर्स, समीर और शफी साहब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच. इट रियली मीन्स अ लॉट. मुझे भी बहुत कुछ सुनने को मिला और जब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से पता लगता है. अभी तो ये सारा मैं रिव्यूज पढ़ती हूँ, लेकिन जब आप कॉल करके मुझे इस तरह बताते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ हमने सही ही इन्फॉर्मेशन निकाल ली है. बहरहाल अभी जब बात हो रही थी तो वन ऑफ आर कॉलर्स टोल्ड अस कि सिंगापुर की जो फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस है, दैट इज एक्चुअली सिंगापुर इज अ स्ट्रेंज प्लेस. फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस कैन बी एक्सपेंसिव, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, जबकि हॉकर्स और स्ट्रीट फूड्स जो हैं दैट कैन बी एक्सट्रीमली वेल प्राइस्ड एंड एक्सट्रीमली अफोर्डेबल. और यही हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि इसीलिए हॉकर्स और स्ट्रीट फूड्स इतने ज़्यादा मशहूर हैं सिंगापुर में, क्योंकि वो जो खर्चा है वो बैलेंस करके इंसान करना चाहता है. जबकि फाइन डाइनिंग सिंगापुर की बहुत ज़्यादा मशहूर है. हॉकर सेंटर्स और स्ट्रीट फूड के अलावा सिंगापुर also one of Asia's most prestigious fine dining destinations, जहां पे मिलेंगे आपको world class chefs, innovative cuisine और साथ ही साथ stunning city views. High rises में बैठ के जब आप top वाली माँ वो कहते हैं ना floor पे बैठ के खाना खाएंगे तो stunning views तो होने ही है. तो यहाँ पे जो है fine dining is also of course an experience. If you have that kind of money to spend, you must visit one of their fine dining experience restaurants. सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो है जी एट मरीना बे सैंड्स. Fine dining reaches new heights. Literally, ये iconic landmark है. This is home to celebrity chef restaurants, luxury tasting menus आपको यहाँ पे मिलेंगे, breathtaking rooftop views मिलेंगे जो कि सिंगापुर की skyline को देख रहे होंगे. और जब आप वहाँ खाना खाएंगे, मतलब Michelin star, celebrity chef होंगे, तो मतलब experience क्या होगा ये तो वहाँ बैठ के ही पता कर मतलब feel होगा इंसान को. From French cuisine to modern Asian fusion to every restaurant यहाँ पे जो है वो एक इम्प्रेसिव मेन्यू आपके लिए लेकर आता है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर फाइन डाइनिंग इज क्लार्क क्वे. दिस इज CLARKEQUAY. दिस इज वेयर फाइन डाइनिंग मीट्स वाइब्रेंट नाइट लाइफ. सेट अलोंग द सिंगापुर रिवर, दिस एरिया ऑफर स्टाइलिश रेस्टोरेंट्स. इंटरनेशनल कुजीन आपको मिलेगी यहाँ पे, ओपन एयर डाइनिंग होगा, लाइवली एटमोसफेयर होगा. और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, द लाइट्स दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द वाटर एक ऐसा हसीन और सूरत मंजर पेश करते हैं कि आपको वाकई लगता है कि आप जैसे किसी जन्नत के ऐसा समा हो चुका है. और ये जो फाइन डाइनिंग की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली दिस विल कॉस्ट अ लॉट इन अ लॉट ऑफ मनी. सो इफ यू आर गोइंग देयर टू एक्सपीरियंस दिस, तो ये आपको थोड़ा सा अपना बजट थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा. बट द स्ट्रीट फूड एंड द हॉकर्स इज डेफिनेटली द प्लेस इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर ऑन बजट फॉर श्योर. अब इस के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं आपसे बात करूंगी द देसी फ्लेवर्स, टेस्ट ऑफ होम इन सिंगापुर.

जी हाँ, सुन रहे थे आप। गानों का सिलसिला तो खैर जारी ही रहता है, म्यूजिक के बगैर हमारे शोज कंप्लीट कहाँ होते हैं। लेकिन म्यूजिक के साथ खाना पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी जगह जहाँ आप खाना खा सकते हैं घर जैसा बना हुआ खाना, एंड दैट इज तंदूरी फ्लेम। दे लोकेटेड इन गार्लैंड। तमाम आपके नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि तंदूरी प्लाटर्स, रिच करीज, बहुत हॉट फ्रेश नान मिलेंगे आपको, कबाब्स मिलेंगे, सब कुछ जो आपके नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स हैं वो सारे यहाँ होंगे मौजूद विद अ होम स्टाइल पंच। सो जरूर विजिट कीजिए तंदूरी फ्लेम, खाइए वहाँ जाके, या घर ले आइए या केटर कराइए अगर आपके घर कोई पार्टी हो रही है या कुछ ज़्यादा सारे लोग आ रहे हैं। सो दिस इज वेयर यू नीड टू गो। ओके, तो अब हम सिंगापुर में हमने सब कुछ खा लिया, स्ट्रीट फूड भी खा लिया, तो हॉकर्स के साथ भी खा लिया, फाइन डाइनिंग भी देख ली। अब जब सब कुछ कर लिया तो अब क्रेविंग हो रही है कुछ देसी खाने की, बिकॉज एज देसी हम लोग थोड़े दिन तो रह सकते हैं देसी खाने से दूर, पर उसके बाद हमें क्रेविंग शुरू हो जाती है, यार कुछ देसी खाना है, बस हो गई, बहुत हो गई। सो सिंगापुर का जो फूड स्टोरी है वो ऑफकोर्स हमारी जो देसी कैलिनरी इन्फ्लुएंस है उसके बगैर कंप्लीट नहीं होती। Shaped by generations of this community who brought their rich traditions, spices, as well as regional recipes to the island. Aur aaj ye jo culture hai, ye thrive karta hai vividly in a very prominent area which is called Little India, a colorful, energetic neighborhood jahan pe khana, khushboo khane ki aur culture, यानी कि तहजीब, सब कुछ एक साथ आपको मिलेगी। और अभी जो हमारे कॉलर जिन्होंने हमें सिंगापुर का अपना एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने हमें कुछ ऐसी ही बात बताई थी लिटिल इंडिया के बारे में। सो वॉकिंग थ्रू लिटिल इंडिया फील्स लाइक स्टेपिंग इनटू अ सेंसरी सेलिब्रेशन। यहाँ आपको ऑफकोर्स देसी फ्लेवर अंदर आते ही, मतलब उस माहौल में आते ही आपको कुछ देसी खुशबुएं आने लगेंगी, देसी अरोमाज आने लगेंगे, एंड नॉस्टैल्जिक फीलिंग होगी कि ओह माय गॉड, थैंक गॉड आई एम गोइंग टू ईट सम देसी फूड। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगी ऑथेंटिक बिरयानी, बिल्कुल उसके साथ आपको मिलेगी जी ऑथेंटिक या एक्सट्रीमली डिलिशियस इंडियन डोसा, साउथ इंडियन डोसाज एंड इडलीज। यहाँ पे आपको मिलेंगे चाट्स एंड स्ट्रीट स्नैक्स, उसके साथ आपको मिलेगी मिठाई यानी कि जलेबी, गुलाब जामुन और भी जो हमारी फेवरेट मिठाइयाँ हैं, और साथ साथ आपको मिलेंगे फ्रेश स्पाइसेस यानी कि मसाले, कार्डमम या आप इलायची से लेके सैफरॉन से लेके हर तरह का मसाला आपको यहाँ मिलेगा। सो ये है द लिटिल इंडिया, जहाँ पे मिलेगा आपको सारा देसी, आपकी जो क्रेविंग है वो हो जाएगी ख़त्म। और रिकमेंडेड प्लेसेस में मैं आपको दो प्लेसेस जल्दी से बताना चाहती हूँ जो कि बार बार लोग जिसके बारे में बात करते हैं, वो है जी एक कुमाला विलाज। ये एक लेजेंडरी स्पॉट है फॉर ऑथेंटिक साउथ इंडियन वेजिटेरियन कुजीन। सो अगर आप वेजिटेरियन हैं और सोच रहे हैं कि आपने कहाँ खाना है और क्या खाना है, तो लीजिए आपको एक ऑप्शन दे दी। और एक और बहुत पॉपुलर जगह इज बनाना लीफ अपोलो, फेमस फॉर इट्स रिच करीज सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स, स्पेशली जो आइकॉनिक फिश हेड करी और साउथ इंडियन मील्स हैं। अगर आपको याद हो, अगर आप सुन रहे थे, तो हमारे जो कॉलर थे शफी, उन्होंने हमें बताया था कि फिश हेड करी इज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन सिंगापुर, एंड आई हैव रिकमेंडेड वन प्लेस फॉर यू वेयर यू कैन गो एंड ईट दिस, दैट इज बनाना लीव अपोलो।

और इसी के साथ जल्दी से आपको बताती हूँ, बस सेगमेंट हमारा खत्म होने वाला है और बात हो रही है वेजिटेरियन। हमेशा आप मुझसे कहते हैं कि जब आप फूड जंक्शन करती हैं तो वेजिटेरियंस का जरा खास ख्याल रखा कीजिए। बिल्कुल जी, आपकी तजवीज सर आंखों पर। तो वेजिटेरियन फूड इन सिंगापुर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं वाइल बिफोर वी रैप अप द सेगमेंट। सो सिंगापुर जो है वो एक्चुअली एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है वेजिटेरियंस के लिए, और इसका जो सारा आप कह लीजिए श्रेय जाता है वो मल्टीकल्चरल फूड सीन को जाता है, क्योंकि सिंगापुर में इतने ज़्यादा भिन्न भिन्न के लोग आते हैं तो हर बंदे की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं ईटिंग की, और इसीलिए उन सब की रिक्वायरमेंट्स को केटर किया जाता है इस जगह पे। वेदर यू फॉलो अ फुल वेजिटेरियन डाइट या फिर आप प्लांट बेस्ड ऑप्शंस खाते हो या फिर आपको कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट, you'll find plenty of flavorful dishes across hawker centers, temples, cafes, restaurants. Har jagah pe aapko vegetarian options milengi. आपको बताते चलें जी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट वेजिटेरियन ऑप्शंस कम्स फ्रॉम सिंगापुर्स इंडियन फूड कल्चर ऑफ कोर्स। खास तौर पे लिटिल इंडिया में तो वेजिटेरियन ऑप्शंस की भरमार मिलेगी आपको, डोसा, इडली, वड़ा, वेजिटेबल बिरयानी, चना मसाला, पनीर एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो हम अभी आपके साथ जिक्र कर चुके हैं। इसी के साथ चाइनीज वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और बहुत सारी चाइनीज डिशेज आपको कंप्लीट वेजिटेरियन ऑप्शंस में मिल जाएंगी, स्पेशली जो हॉकर सेंटर्स हैं और जो बुद्धिस्ट वेजिटेरियन स्टॉल्स हैं वहाँ पे, जिसमें शामिल होगा वेजिटेरियन नूडल्स, फ्राइड राइस, टोफू डिशेस, मॉक मीट वर्जन्स ऑफ चिकन, डक एंड सी फूड, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, स्टर फ्राइड ग्रीन्स विद गार्लिक एंड मेनी मोर। अनदर जगह आप कह लीजिए जहाँ आपको वेजिटेरियन कुजीन मिलेगी वो है वाइल मतलब माले और लोकल वेजिटेरियन चॉइसेस। ऑल दो माले कुजीन जो है वो काफ़ी हैवीली मीट बेस्ड होती है या सी फूड बेस्ड होती है, लेकिन वेजिटेरियन लवर्स के लिए उन्होंने कंप्लीट वेजिटेरियन वर्जन्स बना रखे हैं, जैसे कि वेजिटेरियन या वेजिटेबल नासी लेमक होता है जिसमें गोश्त नहीं होता या मीट नहीं होता, उसके बाद स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स एंड राइस, टोफू बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स आपको हर जगह पर मिल जाएंगे, और इसी तरह वेजिटेरियन डेजर्ट्स और स्नैक्स भी होते हैं। चूंकि हर चीज़ को इतना ज़्यादा वेजिटेरियंस को कंसिडर किया जाता है तो हर तरह का जो डिज़र्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा भी ये हो कि ये मुझे प्लांट बेस्ड खाना है या मुझे वेजिटेरियन बेस्ड खाना है, वो सब आपको मिलेगा सिंगापुर में। सो चाहे आप कैसी भी जगह खाएं, यू विल फाइंड वेजिटेरियन ऑप्शंस हॉकर्स में भी, टेंपल रन वेजिटेबल वेजिटेरियन स्टॉल्स पे भी, लिटिल इंडिया पे भी और मॉडर्न कैफेज पे भी। तो ये हुआ आपके लिए वेजिटेरियन लवर्स के लिए एक क्विक रिकैप। नाउ विद दिस सॉन्ग बस ऑलमोस्ट वी आर ऑन द एंडिंग ऑफ आर फूड जंक्शन जहां हम आज गए थे सिंगापुर।

0: एंड विद दैट वी आर रैपिंग अप आवर फूड जंक्शन, जहां हम गए सिंगापुर कुछ फन फैक्ट्स के साथ. आपको ये सेगमेंट हम रैप अप कर रहे हैं. सिंगापुर इज अ होम टू 100+ हॉकर सेंटर्स, जहां मिलता है आपको ह्यूज वैरायटी ऑफ अफोर्डेबल लोकल डिशेस, नूडल्स से लेके राइस प्लेट्स तक, सब कुछ एक ही छत के नीचे. एक और मजे की फैक्ट आपको बताती हूँ कि यूनेस्को रिकग्निशन, द कंट्रीज फेमस हॉकर कल्चर इज ऑफिशियली रिकग्नाइज बाई यूनेस्को एज इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, सेलिब्रेटिंग नॉट जस्ट फूड बट द कम्युनिटी स्पिरिट एंड ट्रेडिशन बिहाइंड इट. इसी के साथ, सिंगापुर इज वन ऑफ द रेयर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर यू कैन एंजॉय मिशेलिन स्टार क्वालिटी फूड एट हॉकर स्टॉल फॉर जस्ट अ फ्यू डॉलर्स. ये हुई ना सही बात आपके लिए, फन फैक्ट मैंने बताया आपको. और एक और बात कि इन सिंगापुर फूड कोर्ट्स आरंट लिमिटेड टू स्ट्रीट्स, दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स में फूड कोर्ट्स मिलेंगे आपको, ट्रांसपोर्ट हब्स में मिलेंगे, जहां ताकि खाने को बनाया जाए मजीद एक्सेसिबल. दैट्स ऑल फ्रॉम फूड जंक्शन फ्रॉम माई साइड. अभी हूँ 5 बजे तक.
1: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज. होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
2: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023-2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
3: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं.
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं.
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं.
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax. Your growth, our strategy.
7: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
10: Fort Worth, the wait is over. The all-new India Bazaar is celebrating its grand opening from August 7th to August 9th. And you're invited. Enjoy exclusive grand opening specials, exciting games, family fun, and your chance to win incredible raffle prizes, including an iPhone 17 Pro, iPad, and 75-inch, 65-inch, and 55-inch TVs. Spend $200 or more and receive a digital raffle entry. Join us for the ribbon-cutting ceremony on Friday, August 7th, from 9 a.m. to 10 a.m. Fort Worth.
11: First 3 customers shopping for $150 gets a free 10-gram silver coin.
10: India Bazaar, the people's store.
12: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया.
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया.
12: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-7772. That's 972-863-7772.
14: Visit www.senadainc.com today.
15: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग,
13: और ऊपर से ये स्ट्रेस।
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
13: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
13: ये क्या होता?
14: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
16: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।

और इसी के साथ इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं. पीएमजे ज्वेल्स अब आ चुका है फ्रिस्को में, ब्रिंगिंग ओवर 60 इयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस क्राफ्ट्समैनशिप. जी हाँ, एक्सप्लोर कीजिए, आइए पीएमजे ज्वेल्स और देखिए स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल.

Gourmet, bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless craftsmanship. जी हाँ, एक्सप्लोर कीजिए, आइए पी एम जे ज्वेल्स और देखिए स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन उनकी, जो कि आपके किसी भी इवेंट को मैच करती है. प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा, पी एम जे इज नेम दैट इज ट्रस्टेड बाई जनरेशंस. दे आर लोकेटेड इन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट. जरूर आइए, विजिट कीजिए पी एम जे ज्वेल्स. और इसी के साथ एक बार फिर आपको करती हूँ वेलकम. यू ट्यून्ड इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. में टाइम आ चला है आपको देने का जी वेदर अपडेट. बस अराउंड 20-22 मिनट मैं आपके साथ और मौजूद हूँ. आज है थर्सडे ऑगस्ट 6th, 4:38 PM इन द स्टूडियो. और सिटी ऑफ मिकनी में इस वक्त है 99 डिग्रीज. हाउएवर इट फील्स लाइक 104. दिन रहा हॉट एंड सनी, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लियर विद लोज इन द अपर 70s. आज का पोलन काउंट इज 5, विच इज मीडियम, जबकि आज का यूवी इंडेक्स इज 10, विच इज वेरी हाई एज ऑलवेज. जब भी गर्मियों का ये टाइम है तो प्लीज सनस्क्रीन अपनी हैंडी रखिए. कीप योरसेल्फ्स हाइड्रेटेड इफ यू आर प्लानिंग टू स्पेंड योर इवनिंग आउटसाइड फॉर एनी एक्टिविटी. सनराइज आज का हुआ 6:42 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:21 PM. This weather forecast is brought to you by Malabar Gold and Diamonds.

एंड इफ योर चाइल्ड इज इन थर्ड थ्रू फिफ्थ ग्रेड, तो आपको बताऊं जी कि नेक्स्ट जेन स्पीकर्स एकेडमी हेल्प कर सकती है उन्हें टू बिल्ड द कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स दे विल यूज फॉर अ लाइफ टाइम. Created by experienced coaches Sunhee Simon Santiago and Audra Langston, who have mentored debate champions, valedictorians, as well as Ivy League graduates, ye our online program jo hai design kiya gaya hai to help young minds grow into confident leaders. So to learn more about Next Gen Speaker, why don't you visit their website, which is nextgenspeakersacademy.com. जी हाँ, नेक्स्ट जेन स्पीकर्स अकेडमी डॉट कॉम पर लॉग ऑन कीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. वंस अगेन, इफ योर चाइल्ड इज अ थर्ड थ्रू फिफ्थ ग्रेडर, दिस इज वेयर यू कैन स्टार्ट शेपिंग देम अप. गिव देम अ कॉल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. दैट नंबर इज 214-724-2867. एक बार फिर नंबर नोट कर लीजिए, 214-724-2867. So give your child the confidence that they need to lead tomorrow. और वो confidence आपको आज ही देना है उन्हें. इसी thought के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जी. It is time now to give you the currency update के US dollar कहाँ stand कर रहा है with respect to other currencies in the world. इस वक्त according to xrates.com, euro trade कर रहा है 0.86 पे. British pound 0.74, जबकि Indian rupee 95.26 पे stand कर रहा है. Canadian dollar 1.40, जबकि Pakistani rupee 277.53 Pakistani rupees are trading for one US dollar. Nepalese rupee 152.49, जबकि Bangladeshi taka 123.78 Bangladeshi takas are trading for one US dollar.

0: जी हाँ, रोजीना की ही स्टोरी के ऊपर बेस्ड ये गाना आपके लिए मैंने चलाया। अब वक्त आ चला है जी आपसे विदाई लेने का। जाते हुए आपको ट्रैफिक अपडेट देती चलूं, विच इज ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा। एक हमें कोलिजन नजर आ रहा है, विच इज एट IH 45 टूवर्ड्स ओवरटन रोड। 3 out of 5 लेन्स आर ब्लॉक्ड। द सिवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई। नॉर्थ बाउंड का ये इंसिडेंट है जी। देयर इज अनदर कोलिजन दैट आई कैन सी एट 635 टूवर्ड्स US 18 नॉर्थ बाउंड, जिसकी वजह से 3 lanes आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग एन एग्जिट लेन। सो द सिवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई एज वेल। एक और कोलिजन IH 30 पे टूवर्ड्स FM 358 पे नजर आ रहा है। 1 out of 3 lanes आर ब्लॉक्ड। और इसी के साथ अनदर कोलिजन इज रिपोर्टेड एट 635 टूवर्ड्स लूना रोड ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से 4 lanes are blocked. Lots of traffic, lots of backup. Please be very careful when you are heading there. There is another collision that is reported just now, 635 towards Montfort Drive westbound, jiski wajah se 2 lanes are blocked. Once again, the severity of this incident is reported extremely high. So please be very careful and vigilant on the road. Stay safe. I will see you tomorrow with Kids Junction. Stay tuned.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
8: Heere moti, main na chahun.
9: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
14: Are sun ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
15: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
16: Guidance ki baat ho to ek hi naam hai, Pandit Ram Tulsi. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
18: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
19: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
18: इतना सब और प्राइस?
19: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
3: मैं ही.
20: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
21: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
20: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
21: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
20: इंडिया तक।
21: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
19: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
22: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
23: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
24: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
25: Hello Texas Parivar, क्या आपको पता है there is a first time home buyer program under Fannie and Freddie for confirming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call कीजिए Kamna को at 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96.

अगर आप मेरी ये बात नहीं मानते जो मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मैं शो करती हूँ, और ट्यूसडे को शाम को किया था मैंने, मेरा शो नहीं है, मैं कवर ही कर रही थी और कल भी मैं आप लोगों से मिलूंगी रात के 8 बजे, लेकिन तभी मैं कवर ही कर रही होंगी तो कल या परसों जब मैंने शो करा था तभी मैंने बात बोली थी। और अक्सर मैं जब भी शो करती हूँ पिछले 6 साल से मैं ये बात करती हूँ कि मुझे ऐसा बहुत लगता है, और लगता क्या है ये तो प्रूव भी हो चुका है कई बार, कई दफ़ा, अगर मैथ्स में बिलीव करते हैं आप तो बहुत सारी इक्वेशन बन चुकी हैं, प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, बिकॉज की एक चीज़ मुझे लगती है कि जब भी मैं शो करती हूँ और मैं एक गाना लगाती हूँ और एक लहर सी चल जाती है, और लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं और जो लोग जिन गानों के रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब इट इज एक्चुअली लाइक एन एक्शन रिएक्शन, वो न्यूटन का है ना थर्ड लॉ, थर्ड या फोर्थ अब तो मुझे याद नहीं है, बट एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो कुछ इसी तरह का है। और आई एब्सोल्युटली लव दैट, क्योंकि ये मैं सोच के नहीं आ सकती, जैसे मैंने कहा ना आज मैं एक्सटेम्पो मार्विन जी को कवर कर रही हूँ, ये प्लान नहीं था, अचानक से हुआ, नहीं तो शायद आई एम श्योर मार्विन जी आपको कल बता देते। तो ये एक्सटेम्पो जो लाइफ में होता है ये हर, मुझे लगता है हर मोड पर होता रहता है, और ये शो भी मेरा हमेशा एक्सटेम्पो हो जाता है। मैं सोच के आई थी, एक लिस्ट थी मेरे पास एक चीज़ें, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ कॉल करना शुरू की, और एक चीज़ आप लोगों ने भी अपनी शेयर करी, और इससे लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर शेयरिंग द सॉन्ग्स एंड इट इज़ बिकमिंग अ वेरी डिफरेंट शो एंड इट ऑलवेज हैपन्स एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट। मुझे लगता है ये हमारी मिली जुली कहानी बन जाती है, पारो का शो नहीं है ये, पारो एंड डैलस के हमारे प्यारे लिसनर्स का मिला जुला शो है, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई जॉब ईजियर। एंड विद दैट रिक्वेस्ट मेरे पास काफ़ी सारी आ गई है, 972-235-5555 है रिक्वेस्ट के लिए, आप कॉल कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, कॉल कर सकते हैं, पारो इज हेयर अंटिल 7 एंड आई विल बी प्लेइंग योर रिक्वेस्ट वन आफ्टर द अदर। ये रिक्वेस्ट चिंतन साहब की, जी हाँ चिंतन साहब ने रिक्वेस्ट करी है, और ये बहुत ही प्यारा गाना है, ओरिजिनल तो बहुत ही प्यारा है, मैं इसका थोड़ा सा रीमिक्स चलाती हूँ क्योंकि क्या है ना 5 बजे का टाइम है, 5:18 एक्चुअली एक ब्रेक में जाने वाले हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ गाना चला देती हूँ एंड देन वी विल टॉक राइट आफ्टर द ब्रेक।

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
2: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
3: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
2: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
3: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
6: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit nextgenspeakersacademy.com. That's nextgenspeakersacademy.com.
7: आने वाले खाने में डोसा।
4: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
8: पैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
4: विजिट पैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
9: अरे यार, घर मिल गया।
10: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
4: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
10: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
4: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
11: ये तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
12: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 minute वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
4: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

वेलकम बैक दोस्तों. यारों मैं हूँ पारो और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. अभी मुझे कॉल आया ब्रेक में जब हम गए हैं और केतकी से एक बात हुई है, लेकिन वो मैं बताऊंगी जब मैं केतकी का गाना चलाऊंगी, बिकॉज आई फाइंड दैट सो इंटरेस्टिंग एंड इट काइंड ऑफ प्रूव्स माई पॉइंट जो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि यहां से मैं कुछ बोलती भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई वहां है जो वाइब्स पकड़ लेता है और मुझे कॉल करके वही चीज बता देता है या समथिंग लाइक दैट. एंड आई विल एक्सप्लेन मोर व्हेन आई टॉक अबाउट की क्या बात हुई मेरी केतकी से. फिलहाल मैं चलाना चाहती हूँ गाना रिजवान साहब ने करा है रिक्वेस्ट सहर के लिए, और सहर जो है उनकी वाइफ हैं. और एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने उन्हें कहा देखिए बॉलीवुड का गाना नहीं है, हम बॉलीवुड के गाने चलाते हैं इस शो में, बड़ा प्यारा गाना है. उन्होंने कहा आप सुनिए, तो बिल्कुल जब ब्रेक में थे तो मैंने थोड़ा सुनी लिया एंड आई विल प्ले दैट ये गाना आपके सहर के लिए. मैं एक ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि यू तो वैसे हम नहीं चलाते नॉन बॉलीवुड के गाने, हिंदी का ही गाना है, उर्दू कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये बड़ा प्यारा लगा कि उन्होंने कहा कि वही पसंद है उनको. मैंने कहा कोई और गाना लगा देती हूँ, तो रिजवान साहब ने कहा कि नहीं सहर को वही पसंद है. आई रियली होप दैट दिस काइंड ऑफ कनेक्शन, दिस वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हमेशा बनी रहे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी सहर को पसंद है तो हमारी सहर को भी पसंद है, क्योंकि आपकी सहर हमारी भी मित्र है, हमारी भी दोस्त है, तो चलाते हैं उनके लिए गाना.

What a wonderful song, Meri Zindagi Hai Tu. Batana chahti hu aapko, this part of the show is brought to you by Omar Khwaja. An accident can happen in seconds, but recovering from it can take much, much longer. If you have been involved in a car crash, truck accident, or a slip and fall, then let attorney Omar Khwaja handle the legal battle while you focus on healing. He'll fight for the compensation you are entitled to, and you pay nothing unless your case is won. Aap call kar sakte hain, unka number hai 469-300-5046, or you can visit his website, which is attorneyomar.com, for free consultation. Aur thodi der pehle maine aapse kaha tha ki I was thinking about something, and what was it that I was thinking is aaj maine ek reel dekhi, which really stayed with me a lot, and a lot of you who have migrated from India, Pakistan, or kuch aapko kai saal ho gaye hain is desh mein, I feel you would relate to this. To main Delhi ki hoon, Delhi ko belong karti hoon, and 90s ka Delhi mere liye bahut special hai. Connaught Place wagera jaate the hum log, Connaught Place CP jisko bolte hain, you know, Delhi ka downtown hai. And aap to khair bahut bada ho gaya hai, bahut changes bahut zyada aa chuke hain, but 90s ka Delhi was very special, and kuch special shops hoti थी जहां हर कोई जाया करता था. दे वर जस्ट दिस जिसको हम लोग अड्डा बोलते थे, ये यू नो, ये चाय पीने के लिए या समोसे खाने के लिए, ये नया नया मैकडॉनल्ड्स उस समय खुला था इंडिया में, दिल्ली में. सो थिंग्स लाइक दैट. सो 90s वाज अ वेरी स्पेशल एरा, एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट व्हेन आई वाज वाचिंग दिस रील, क्योंकि इसमें आई थिंक AI जनरेटेड है, लेकिन इतना रियलिस्टिक है एंड वेरी नोस्टैल्जिक. सो आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट, इसलिए मैंने एक गाने की मैंने जो गाना चलाया आप लोगों के लिए, वो थोड़ा उसी टाइम का है, 2000s का टाइम का है, बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट that. But interestingly, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी वही सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट भी इसी तरह की आ रही हैं. जैसे कि अगली रिक्वेस्ट मेरे पास भार्गवी की है, और ये रिक्वेस्ट जो है ये 2000 का गाना है. सो सी, इट्स द सेम पीरियड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट.

0: बहुत प्यारा गाना है. वी विल गो नाउ लिसन टू इट क्योंकि अभी शुरू हुआ है. बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर शहीद पंजवानी हु इज ऑन एयर विद अस राइट नाउ. और काफी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है फंडिंग का. तो आज हमारे साथ हैं फोन पर SBA लोन एक्सपर्ट, जो लोगों को बिजनेस परचेज, फ्रेंचाइजी, स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, हेल्प करते हैं. वेलकम टू ऑन एयर ऑन फनिशा रेडियो मिस्टर पंजवानी.
1: थैंक्स फॉर हैविंग मी.
0: Yes, sure. This is really for new business starters or buyers. I've heard that SBA is starting two new loan programs to help business owners. So can you please tell our listeners what these new programs are and how can they help business owners seeking capital?
1: So yes, SBA did start two new programs. One is for a Made in America loan program, which is specifically designed for the those who are in import business, agar a manufacturing business, so not in import business. Agar aap manufacturing business mein ho, to this new Made in America program, you can get up to $1 million in SBA term loan. And second, jo program jo unhone shuru kiya, wo hai SBA grocery guarantee program, jo mujhe laga lagta hai ki hamari community mein kafi log food related business mein hai, jo is program ka advantage le sakte hai. So agar aap in dono mein se koi bhi field mein ho, ग्रोसरी रिलेटेड बिजनेस में हो या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस में हो, कॉल अस एंड वी विल हेल्प यू गेट दिस द टू न्यू प्रोग्राम्स दैट SBA स्टार्टेड. हैविंग सेड दैट, मेनली स्पेसिफिकली आई वांटेड टू टॉक अबाउट जो लोग अपना बिजनेस खरीदना चाह रहे हैं या फ्रेंचाइज खरीदना चाह रहे हैं या फ्रेंचाइज शुरू करना चाह रहे हैं. वी स्पेशलाइज इन SBA लोन्स एंड वी कैन हेल्प देम गेट द लोन टू बाय द बिजनेस इन मेनी केसेस लेस देन 5% डाउन. आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल. अगर आप एक

0: HR है, वी स्पेशलाइज इन एसबीए लोन्स एंड वी कैन हेल्प देम गेट द लोन टू बाय द बिजनेस इन मेनी केसेस लेस देन 5% डाउन. आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल. अगर आप एक फ्रेंचाइज खरीद रहे हो जिसका टोटल प्रोजेक्ट $500,000 है, आपको $50,000 डाउन देना है एंड रेस्ट ऑफ द मनी कैन बी फाइनेंस. एंड व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग द लोन अंडरराइटिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस वी कैन गिव यू अनदर $25,000 to $50,000 ऑफ वर्किंग कैपिटल व्हिच इज एन एडिशनल लोन. So whatever down you put, it comes back to you as in the form of working capital, and you basically ended up buying that business either with zero down or with either with less than 5% down. If somebody is in the market trying to buy a business or trying to start a franchise, call us. Let's one-on-one call discussion, and we will help you find a way with as little money out of pocket as possible, and we can help you get the loan to start that business.
1: Awesome. और आपको कैसे contact करें, Mr. Panjwani, अगर आप वो भी share कर दें?
0: 817-786-3338.
1: 817-786-3338. Awesome. Thank you so much, Mr. Panjwani. This is all great information. An SBA loan expert, Mr. Panjwani, on air with us. Thank you again. बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक में जाने वाले हैं दोस्तों, तो आपके गाने में चलाती रहूंगी. मेरे पास कॉल्स बहुत सारी आ रही थी, सो इफ यू हैव अ रिक्वेस्ट प्लीज कॉल. यस, आई एम हियर टिल 7972355555. आई कैन टेक अ फ्यू मोर रिक्वेस्ट. पावर इन द हाउस.
2: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, एआई एंड लेट स्टेज प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटीज एंड अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. लर्न हाउ अ पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी कैन हेल्प यू परस्यू योर फाइनेंशियल गोल्स. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए एचईबी के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी एचईबी पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. एचईबी, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
5: डॉन को करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
6: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
8: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन अर्विंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
6: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
9: जिंदगी एक रंगमंच है
10: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
8: कॉल 972-897-1530. firstunitedtexastitle.com.
11: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
12: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
11: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
8: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 11:30 a.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge

0: extensive knowledge of astrology and palm reading. Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
1: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: केतकी जी से बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात हुई. देर वॉज अ सॉन्ग कॉल्ड पिया बसंती, बहुत हिट ये एल्बम सॉन्ग है एंड आई यूज टू लव द सॉन्ग. मैं ये गाना चलाना चाहती थी जब मैंने ये शो शुरू किया, और उस वक्त जब मैं गाने चला रही थी, ये आधे घंटे पहले की बात है, कोई बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की बात नहीं है, बट आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट सॉन्ग. लेकिन क्योंकि मुझे गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत चलता था, ये MTV उस टाइम पे आता था इंडिया में और नया शुरू हुआ था ये कह सकते हैं, एंड इट वॉज वेरी पॉपुलर, ये काफ़ी एल्बम सॉन्ग था, चलता था. तो मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा था ठीक से, या ये कह दीजिए कि लाइक आई वॉज जस्ट नॉट एबल टू, लाइक एक वर्ड होता ना आपको जो मुखड़ा होता है, वो नहीं हो पा रहा था. तो फिर मैं सोच रही थी ठीक है मैं सोचूंगी, आई वॉज जस्ट पुशिंग इट अवे. और 5 मिनट बाद केतकी जी का कॉल आया और उन्होंने कहा पिया बसंती चला दीजिए. मैंने कहा 5 मिनट से मैं ये सोच रही हूँ एंड आई वॉज नॉट एबल टू थिंक ऑफ द नेम, और आपने मुझे कॉल करके उसी गाने के बारे में बताया. और उन्होंने कहा मैं 5 मिनट पहले कॉल करने का सोच रही थी फनीशिया, लेकिन मुझे फनीशिया का नंबर याद नहीं आ रहा था. खैर नंबर तो मैं बता देती हूँ आपको, 9723555555. हमें अपने दिल में रख लीजिए, याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, जैसे ही फनीशिया का नाम लेंगे डायल कर देगा फोन, ऑटोमेटिक डायल कर देगा. लेकिन आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग कि ये 5 मिनट का क्या चक्कर है. अगर आप भी 5 मिनट से कुछ सोच रहे हैं तो ज्यादा मत सोचिए, 5 मिनट कर करके जिंदगी निकल जाती है. 9723555555 करके कॉल कर दीजिए. गाने की और रिक्वेस्ट आ चुकी है मेरे पास, आई विल बी प्लेइंग वन आफ्टर द अदर. केतकी ये आपके लिए, और अब मेरा गाना नहीं चलेगा, आपका चलेगा. फनीशा रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: हाय पारो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड, गुड इवनिंग.
1: आई एम रिक्वेस्टिंग अ सॉन्ग फ्रॉम गुप्त, दुनिया हसीनों का मेला.
0: आपका नाम?
1: मेरा नाम नीरजा है.
0: अच्छा, आपने पिक्चर देखी है नीरजा जी?
1: हाँ देखिए.
0: अच्छा, इस फिल्म की एक कहानी हुआ करती थी कि इसका जो एंड में ट्विस्ट है वो अगर हाँ. पता चल गया लोगों को तो मजा नहीं आएगा. इसलिए मैंने पूछा आपने देखी है क्या, क्योंकि हम लोग ये बहुत करते थे अपने फ्रेंड्स को, वी वर इन इंडिया, दिल्ली में होते थे तब हम, तो हम ये जिनको पता था वो बता देते थे एंडिंग एंड सबका मजा खराब करते थे.
1: स्पॉइलर
0: या क्योंकि उस समय इतनी इस तरह की पिक्चरें बनती नहीं थी, तो और स्पेशली इस तरह का विलन,
1: और इतना सोशल मीडिया भी इतना ओपन नहीं था ताकि पता चले.
0: हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो आप छुपा ही नहीं सकते, सोशल मीडिया पे डाल ही देंगे लोग. जैसे धुरंधर 2 आई नहीं, एंडिंग पहले डाल दी.
1: कॉलेज की बात है, हमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता था, हम खाने के लिए अपने डॉर्म में आते थे एंड देन इट यूज्ड टू बी सो हॉट, सो खाना वाना खा के एंड पंखा पूरा चला के, एसी तो होता था नहीं डॉर्म में.
0: हाँ जी.
1: और हमारे पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, हम ये गाना फुल ब्लास्ट में लगा के 10 मिनट की नींद मार लेते थे.
0: अरे वाह वाह. अभी आप ड्राइव कर रही हैं राइट? तो अभी आप आंखें खोल के ड्राइव करिए, अब हम नींद बंद मार लीजिएगा, गाना चलेगा तो. बट आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. कहाँ गई थी आप कॉलेज, कौन से शहर में?
1: मैं गई थी जहाँ पे अमूल का बटर बनता है.
0: अच्छा, गुजरात. हाँ, कौन सी जगह है गुजरात में ये?
1: आनंद
0: राइट. या अमूल गुजरात का ये मुझे पता था, बट आनंद याद नहीं आ रहा था. चलिए आपको आनंद से आपका सफर अच्छा जाए, मैं एक एक करके गाने चलाती हूँ, आपका भी आएगा थोड़ी देर में. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग.
1: थैंक यू वेरी मच.
0: चलिए केतकी जी का गाना चला देती हूँ, काफी वक्त हो गया उन्होंने जब रिक्वेस्ट करी थी.

0: What a beautiful song. लेकिन अभी आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन ऑन एयर. सो आप उनके इंटरव्यू के बाद आई डू हैव अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एंड आई बी प्लेइंग दम वन आफ्टर द अदर. बट फिलहाल वी हैव मिस्टर अमन फ्रॉम उरा डेट रिलीफ ऑन एयर विद अस. सो आई वॉन्ट टू टेल यू आवर लिसनर्स अबाउट उरा डेट रिलीफ. सो वेलकम टू द उरा डेट रिलीफ सेगमेंट एंड वी हैव उरा डेट रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन representative Mr. Raman. He's going to tell us about URA Debt Relief Program. Hello, Mr. Raman. How is your evening going? Welcome to Vanisha Radio.
1: Thank you, Vanisha. सुनने वाले सभी listeners को URA और अमन की तरफ से नमस्कार. आज अगस्त का छठा दिन है. सावन का महीना चल रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि पैसा आप बचाना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट इस हफ्ते डेफिनेटली चिट्ठियां आ गई होंगी. मैं तो हमेशा उनको कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड वालों के लव लेटर्स आपको आ गए होंगे कि मिनिमम पेमेंट दे दीजिए, मिनिमम पेमेंट भर दीजिए, नहीं तो क्रेडिट खराब कर देंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिनिमम पेमेंट भरने के साथ साथ भी क्रेडिट खराब होता है, क्योंकि डेट टू हाई इनकम होने के कारण, आपकी डेट टू इनकम रेशियो जो हाई होने के कारण आपका क्रेडिट स्कोर वो खराब कर देते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ हो जाए, तो आप उरा को कॉल कीजिए. कार्ड कोई भी हो सकता है, स्टोर का, बिजनेस का, पर्सनल या फिर आपका, आपकी वाइफ का, उन सारे कार्ड्स की एक पेमेंट बन जाएगी और उसमें से आधा कर्जा माफ हो जाएगा. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि आपके पर्सनल लोन्स और साथ ही साथ आपके क्या कहते हैं गाड़ी के लोन भी आप उसको नेगोशिएट करके माफ करा सकते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ हो, तो जस्ट कॉल उरा. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. या फिर आप अपने दोस्त अमन यानी मुझसे बात कर सकते हैं 9167763555. या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.ura.org.
0: Thank you so much, Mr. Raman. And yes, so any questions you have, please reach out. आप अमन जी को कॉल कर सकते हैं या फिर उरा की वेबसाइट पर जा सकते हैं. Thank you again for being on air with us.
1: Really appreciate. Thank you.
0: और अब मैं चलाना चाहती हूँ आप लोगों के गाने, क्योंकि जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी और एक बड़ी प्यारी रिक्वेस्ट आई. निलेश जी ने हेतल अपनी वाइफ के लिए इस गाने की रिक्वेस्ट करी और उन्होंने कहा कि हेतल का जन्मदिन कल था और वो आज वेट कर रहे थे कि पारो ऑन एयर आए. तो ये तो घर मैंने ऐड कर दिया, लेकिन भाई पारो आई है तो गाना तो चलाएंगे और हेतल को हम विश भी करेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. वैसे मैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे यूजुअली लोगों को नहीं बोलती, मैं तो कहती हूँ कि एक बार और करिए सेलिब्रेट. आज भी आप मेरी तरह से सेलिब्रेट करिए और निलेश जी अगर कल केक नहीं खाया और खाया भी है तो भी कोई बात नहीं, आज जरूर मेरी तरह से कुछ मीठा खाइए और हेतल जी को भी खिलाइए.

2 मिनट में हम एक छोटे से ब्रेक में जाने वाले हैं और यूजुअली इस समय टाइम नहीं होता बहुत ज़्यादा गाने चलाने का, लेकिन मैं फिर भी चलाऊंगी क्योंकि ये रिक्वेस्ट मेरे पास बड़ी प्यारी आई थी एंड आई वांट टू प्ले द सॉन्ग. मैं ज़्यादा नहीं इंतज़ार कराना चाहती हमारी नीरजा जी को, जिन्होंने जो आनंद से हैं जहां पर अमूल बनता है. तो चलिए आपकी पसंद का गाना मैं चलाती हूं गुप्त का, एंड वी विल बी हेयरिंग इट टू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. उसके बाद यहीं लौटिएगा, पारो के साथ करनी है और बातें और सुनने हैं और गाने ऑन 104.9 FM.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Weekend ka plan, abhi tak nahi mana. First 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम
7: भूख लगी
8: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है
9: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग
10: अ क्विक बाइट अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर यू गो टू पेज 3 हब 121 मैकिनी
11: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
12: जीनी हुकम मेरी अखा हम आज पार्टी के मूड में हैं एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो
13: मिराज लाउंज चलिए मेरी अखा लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं
12: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं
13: नो प्रॉब्लम अखा लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
12: और एंटरटेनमेंट
13: मूवी नाइट बेली डांसिंग नाइट्स प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है
12: वाह जीनी ये जगह है या कोई जादू
13: जादू नहीं मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे मिरेकल्स हैपन इन मिराज
11: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
14: सुनो कल बहुत काम है. पहले grocery, फिर पूजा का सामान, gifts भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं cooking नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा dinner करके आएंगे.
15: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
14: कहाँ?
16: Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, puja essentials, live pani puri, catering services, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy. Enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
11: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
17: This
7: this 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco. Saturday from 2 p.m. onwards, experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone.
11: For sponsorship booth from $3,000 to $50,000 and vendor stalls at $750. Call 214-529-3257.
7: Celebrate India's 80th Independence Day with the entire community. IANT Anand Bazaar 2026 on Saturday, the 15th of August, 2 p.m. onwards at the Comerica Center in Frisco.
17: वेलकम बैक दोस्तों यारों, मैं हूँ पारो। आधा हो गया है शो हमारा, आधा है बाकी, यानी कि 5 बजे से 7 बजे तक ही है ये गाड़ी, ये सफ़र। और थोड़ी देर पहले मैंने चलाया था आप लोगों के लिए, थोड़ा चला था ये गुप्त का गाना, लेकिन मुझे लगता है नीरजा जी थोड़ा सा ही शायद चला, लेकिन क्योंकि हम ब्रेक में चले गए, लेकिन आपको ये बहुत लंबी पुरानी यादों की तरफ ले गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। एंड ये जिंदगी क्या है, जिंदगी यादें ही तो है, ये यादें नहीं तो जिंदगी नहीं, दैट्स व्हाट आई फील। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च एज वेल कि हम ज़्यादातर वक्त अपना जो है वो यादों में ही बिताते हैं। 80-90% ऑफ द टाइम वी स्पेंड in the past, can you believe that? Funny Share Radio, you are on the air. Haan ji, boliye.
18: Ma'am, ek gana request hai. It's called Drive By by Sima. Drive By. It's a Punjabi song by Simran.
17: By Simran. Drive By Simran.
18: Simran.
17: Acha, Simran. Okay. Got it. ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, यूजुअली हम लोग बॉलीवुड के चलाते हैं, मैं थोड़ा देखती हूँ सुन के, एंड देन इफ इट्स ओके आई विल प्ले। आपका नाम सर जी?
18: राहुल
17: साहब, थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग। अभी नीरजा जी का गाना चलाया था, तो आई वांट टू प्ले अ सॉन्ग मेरी तरफ से नीरजा जी आपके लिए, और बड़ी प्यारी जगह को बिलोंग करती हैं आप, जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले आनंद, जहां जिसने अमूल दिया है, मैं तो कहूंगी इंडिया को, और इंडिया से जब लोग बाहर भी चले गए तब भी अपने साथ वो मक्खन लेकर गए ये मक्खन लगा के लोग कहां कितना ऊपर पहुंच गए। हमारे यहां होता था स्कूल में, जो ज्यादा मक्खन लगाता तो उसके ज्यादा नंबर आते थे। तो ये जो मक्खन है जिससे लोगों की बड़ी तरक्की हुई है हमारे इंडिया के लोगों की, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, ये मक्खन की ओरिजिन जो है वो आपकी जगह की है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं एक ही बात सोच रही थी जब आपने ये कहा, अपने कॉलेज की आपने बड़ी प्यारी याद बताई जब आप ये गाना सुनते थे डॉर में आकर, और हम लोग भी हॉस्टल में, कॉलेज में, दिल्ली में हम लोग भी हॉस्टल में आके ऐसे ही करते थे, कुछ इस तरह की हरकतें करते थे, गाने सुनते थे, टीवी देखते थे। तो मैंने सोचा कि देखिए वक्त कितना बदल गया, और वक्त के साथ साथ हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स कितने बदल गए। फॉर इंस्टेंस गुप्त का जो एक्टर है अब वो अबरार बन के आया है।

हिमालयन बाजार के बारे में बता देती हूँ। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय हिमालयन बाजार। डिस्कवर हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी, सर्विंग द एंटायर साउथ एशियन कम्युनिटी विद ऑथेंटिक ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, प्रीमियम हलाल मीट्स एंड एवरी डे एसेंशियल्स। एंजॉय हॉट समोसाज, पानीपुरी, मसाला चाय एंड कॉफी वेयर व्हाइल यू शॉप। मतलब शॉपिंग करते करते खाना पीना एंजॉय करना भी साथ में इंक्लूडेड है। कॉम्पिटेटिव प्राइजेस, फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स ओवर $50 विद इन 5 miles एंड लॉयल्टी रिवार्ड्स विद एवरी परचेज। जस्ट ऑफ हाईवे 360 साउथ एट 5103 मैग्ना कार्डा बुलेवार्ड, ग्रैंड प्रेरी। हिमालयन बाजार, वेयर एवरी आइल फील्स लाइक होम। होम की तो बात करते हैं हम यहाँ फनेशिया में, क्योंकि होम जो होता है वो हमारे दिल के बहुत करीब होता है। और घर से हम कितना भी दूर चले जाएं, लेकिन घर हमेशा हमारे साथ हमारी यादों में। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी ना कि 80-90% ऑफ द टाइम अ पर्सन स्पेंड्स इन देयर मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, बच्चे कितने प्रेजेंट में रहते हैं, हम बच्चों की तरह क्यों नहीं हो सकते। छोटे बच्चे को देखा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है आगे क्या होने का, पीछे क्या होने का, कोई टेंशन नहीं, इंजॉय करने का बिल्कुल। दे आर सो इन्वॉल्व। अगर टॉयज के साथ खेल रहे हैं, आप किसी छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करें, और जितना छोटा स्पेशली वो, उसका इतना कॉन्सेंट्रेशन वहीं पे रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। कोई बम भी गिरा है तो कोई मतलब नहीं है, क्या हो रहा है दुनिया में कोई मतलब नहीं है। दैट पर्सन, दैट लिटिल बेबी इज सो एनग्रॉस्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो कई बार आपने ये सुना होगा कि लोग बोलते हैं, बच्चों की तरह हम क्यों नहीं होते, क्यों हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। मैं बताती हूं, इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास तो यादें ही नहीं है, पास्ट ही नहीं है। और हम लोग जो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम ये कह लीजिए जो हमारा नेक्स्ट फेज है उसके पास तक पहुंचने लगते हैं, एज वी ग्रो ओल्डर, हम बहुत सारी मेमोरीज बहुत बहुत उठा के चलते हैं, बैगेज बढ़ता जाता है। तो कैसे रहे प्रेजेंट मोमेंट में जब पास्ट जो है वो हमारे साथ है। एंड विद दैट राहुल जी, बिल्कुल आपका गाना चलाती हूं मैं।

थोड़ी देर में आप लोगों के लिए गिव अवे भी लेकर आ रही हूं मैं, और घड़ी में हुए हैं 6:14. अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी रिटर्निंग फ्रॉम वर्क, घर जा रहे होंगे, घर जा रहे हैं, घर की बात ही पारो कर रही है. और घर से एक चीज और मुझे याद आई, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क. और तनिष्क तो डेफिनेटली आपको घर की याद दिलाता होगा. और डायमंड्स आर एन जस्ट फॉर एवर, दे आर इवन मोर इरेजिस्टेबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स. तनिष्क का फेस्टिवल आ रहा है डायमंड्स का, एंड यू कैन एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस. दैट्स अमेजिंग डील. प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट. तो सेलिब्रेट करिए इस सीजन को विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई. और देखिए, घर की अगर बात करें तो मुझे एक फिल्म है और उसका गाना मैं आप लोगों के लिए चलाना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत घर और परिवार की फिल्म है ये समझ लीजिए. मतलब मिस्ट्री भी है, थ्रिलर भी है. आप जानते हैं अक्टूबर में क्या हुआ था, 2 अक्टूबर को? आज 2 अक्टूबर है, आज नहीं है आज, लेकिन ये इस फिल्म में 2 अक्टूबर में क्या हुआ था. इस फिल्म में 2 अक्टूबर में विजय और उसकी फैमिली पंजिम गए थे, और वहां स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग में रहे थे, और वहां पाव भाजी खाई थी. फिर 3 अक्टूबर को वापस आए थे. याद है आपको? एंड व्हेन आई थिंक अबाउट दैट, ऑब्वियसली आई थिंक अबाउट फैमिली एंड होम, जो इस फिल्म का एक अंडरकरंट चलता है. थ्रिलर और वो सब तो है ही, लेकिन उसके साथ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दैट वो सब भी चलता है. एक्टिंग बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये अंडरकरंट एक ये चलता है कि इंसान अपने घर के लिए, अपने घर को और अपने घर वालों को सलामत रखने के लिए क्या नहीं कर सकता. हिस्ट्री बदल सकता है, पास्ट बदल सकता है. क्या इंसान अपना पास्ट बदल सकता है? क्या इंसान अपना पास्ट का एक नैरेटिव चेंज कर सकता है? ये इस फिल्म में तो चेंज करा है. दृश्यम, एक ऐसे दृश्य दृष्टिकोण से देखकर चेंज किया है, विच आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन कर सकता है या नहीं कर सकता, इसकी बात करेंगे थोड़ी देर में. एक गाना ये सुनेंगे और उसके बाद एक छोटे से ब्रेक में जाएंगे, और उसके बाद पारो यहीं लौट कर आएगी. कहीं मत जाइएगा, जैसे मैंने कहा, चलते रहिए जहां जा रहे हैं. पारो और पारो की आवाज और फनी शे की आवाज अपने साथ लेकर चलिए, बिकॉज अ गिव अवे इज कमिंग सून योर वे.

दोस्तों यारो, मैं हूँ पारो। कैसे हैं आप लोग? अगर अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम वेलकम। घड़ी में हुए हैं 6:24, 7 बजे तक रहेगी पारो आप लोगों के साथ। बताना चाहती हूँ आपको, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय टेक्सास प्राइमरी केयर। 13 साल से, जी हाँ, फॉर 13 ईयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर्ड फॉर आवर कम्युनिटी। नाउ दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन। इंट्रोड्यूसिंग लेनक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। लेनक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन House lab testing, X-rays, CT scans, cardiac diagnostics, and Himalayan Med Spa services all under one roof. ये 7 दिनों तक खुले हैं। 7 दिन मतलब पूरे हफ्ते खुले हैं। Every single day they are open 7 days a week, from 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. Appointment की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस वहाँ जा सकते हैं। And with that, let's listen to this song. Like ये जब गाने में सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी past की, right? हम बहुत ज़्यादा वक्त अपना past में बिताते हैं, नॉस्टैल्जिया या इस तरह से हम बहुत ज्यादातर लोग बिताते हैं। कई बार हम लोग कॉन्शियसली बिताते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं होता है, बट वी आर एक्चुअली लिविंग इन द पास्ट। एंड समटाइम्स आई फील दैट वी आर लिविंग इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। और जब इस तरह के क्लासिक गाने रीमिक्स बनकर आते हैं नई बीट्स पर, मतलब म्यूजिक वही है लेकिन थोड़ा सा उसमें नया फ्लेवर, नया तड़का डाल दिया है, तो मुझे लगता है कि पास्ट और प्रेजेंट का बढ़िया सा मिलन होता है।

दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय सीमा मेहता लॉ ऑफिसर्स. अगर आप H1B पर हैं, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीसा एंड प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस्ड टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5, इन्वेस्टर वीसाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीसाज, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द EB-5 इन्वेस्टर वीसा प्रोग्राम, आप उनको ईमेल कर सकते हैं और उनकी ईमेल है info@seemamehtalawfirm.com. एक बार फिर से बता देती हूं, info@seemamehtalawfirm.com, एंड दैट इज द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता. जी हाँ, बिल्कुल. एंड विद दैट, थोड़ी देर में जैसे मैंने कहा गिव अवे आने वाला है और आप लोगों के लिए मैं एक्चुअली एक और इंटरेस्टिंग चीज लेकर आई हूं. सो आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन इन रिलेशन टू राखी, तो आप तैयार रहिए. मैं पहले ही आपको बता देती हूं ताकि आप लोगों को सोचने का थोड़ा सा मौका मिल जाए. इट इज अ सिबलिंग स्टोरी, सो आई एम गोइंग टू आस्क इन अ लिटिल बिट. और चूंकि हमारे पास वक्त कम है तो मैं ऑन एयर एक या दो से ज्यादा नहीं ले पाऊंगी कॉल्स, लेकिन अगर कोई सिबलिंग इंटरेस्टिंग सी आपके पास स्टोरी है दैट यू वांट टू शेयर, आई विल बी ओपनिंग lines in a little bit. Abhi nahi, let's listen to the song, but I'm going to do that and I'm going to give a little bit more clarity. Bilkul aise nahi, aise hi nahi, aap logo ko main exactly bataungi ki kya hai, lekin aap tab tak apne bhai behan ki koi ek kahani hai to soch sakte hain, choti si pyari si. Ho paise ki

0: तो क्या है ये गिव अवे, बताती हूँ आपको, ये चौक था, अगर आपने नहीं सुना है, कह क्यों नहीं सुना, डालस में अगर आप रहते हैं और आप मस्ती और इंजॉय करने में बिलीव करते हैं मेरी तरह, पारो की तरह, तो चौक था, चाहे आप गए हों या ना गए हों, नाम जरूर सुना होगा, इट इज़ वेरी फन प्लेस, इट्स अ कैसीनो एंड रिजॉर्ट। तो ये रक्षाबंधन आने वाला है, राखी आने वाली है, सो इट इज़ दिस पार्ट ऑफ द शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय चौक था रक्षाबंधन। तो इस रक्षाबंधन पर फनीशा रेडियो एंड चौक था कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट wants to hear, they want to hear your most unforgettable memory with your brother or sister. एक मिनट से अंदर, within one minute, आपको बतानी है स्टोरी, लंबी चौड़ी नहीं, सिर्फ एक मिनट में आप एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी बताइए। So you have to tell a one minute story and this is, all these shows are recorded, तो ये आपकी स्टोरी जो है यहाँ ऑन एयर पर रिकॉर्ड हो जाएगी and you can win exciting daily prizes including dining experiences, entertainment, resort stays and the grand prize. And Unforgettable sibling reunion weekend and chalk at Chalkta Casino and Resort Durant. Iski details contest ki agar aapko aur pata karne hai, you can check out Fanisha Radio's social media page. Jaise maine aap kaha ki Fanisha ka aap social media page pe main hamesha kehti hu jayenge to you'll find a lot of information but also this. Meri lines bajne lagi hain to main thoda sa aur bata deti hu aapko Chalkta ke bare mein. I'll open the lines. Chalkta Casino and Resort Durant where unforgettable memories are made together. You should must be 21 year old to participate. Ye bahut zaruri hai. To agar aap bachche hain तो आप प्लीज कॉल मत करिए, अपने पेरेंट्स को बोलिए कॉल करने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। आपको एक मिनट से अंदर अंदर स्टोरी बतानी है। आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट कॉलर और मैं एक ही कॉलर ही जीत सकते हैं पर शो ये अवार्ड। तो लेट्स सी कौन है हमारे साथ। फनीशा रेडियो नहीं कट गया। सो यस यू कैन कॉल, वी आई विल बी प्लेइंग सॉन्ग्स एज वी गो अलोंग, लेकिन जब भी आपकी कॉल्स आएंगी आई विल बी टेकिंग देम ऑन एयर। फनीशा रेडियो यू आर ऑन एयर।
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
1: हाँ, मुझे मेरी बहन के बारे में बोलना था।
0: हाँ जी, विद इन वन मिनट कोई एक इंटरेस्टिंग सी बात बताइए कॉन्टेस्ट के लिए।
1: हाँ ठीक है। या वो मेरी बहन, हम लोग पांच, वी आर फाइव सिस्टर्स, तो वो सबसे छोटी है एंड आई एम सेकेंड, तो उसका नाम हेतल है, तो शी इज लाइक 8 years यंगर टू मी। तो जब यू नो व्हेन शी वाज बोर्न, मुझे जैसे हमारे पास जैसे गुड़िया आ गई थी, लाइक यू नो बिकॉज वी वर ओल्डर इनफ, तो उसका हमने इतना ध्यान रखा है एंड वी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हर। फिर उसको ऐसे एलिवेटर में लेके जाएंगे, शी वाज वेरी प्रीटी, तो उसको कोई भी देखेगा तो यू नो इंडिया में तो ऐसे गाल भी खींचते हैं, मतलब तो जब कोई ऐसे करता था तो वी यूज्ड टू फील कि वाओ देखो कितनी प्यारी है, तो एवरीबॉडी लाइक्स हर, तो जैसे हमारी अपनी बेटी है तो हम लोग को कैसे खुशी होती है, वैसे यू नो वी यूज्ड टू फील फॉर हर। तो आई ऑलवेज थिंक फील कि वो मेरी फर्स्ट डॉटर है एंड व्हाट डॉटर आई हैव अभी मेरी, वो मेरी सेकंड डॉटर है, दैट्स व्हाट आई फील फॉर हर इवन नाउ।
0: और
1: वो जब छोटी थी देन आई यूज टू लाइक यू आई सॉ सम एक खिलौना देखा था, आई वांटेड टू बाय फॉर हर, तो तभी तो पॉकेट मनी जैसे 25 पैसा मिलता था, तो और इट वाज लाइक $3-4, तो देन आई यूज टू यू नो वो इकट्ठा किया था मैंने पैसा, बिकॉज आई वांटेड टू बाय दैट डॉल बिकॉज आई न्यू कि उसको अच्छा लगेगा।
0: वेरी स्पेशल स्टोरी, थैंक यू सो मच। और चूंकि वक्त कम है हमारे पास, आप मेरे साथ ऑन एयर बने रहिए, मैं आपके डिटेल्स लेती हूँ इन अ लिटिल बिट। एंड मेरे पास और कॉल्स आ रही हैं, आई डू वांट टू मेंशन कि हम एक ही कॉल ऑन एयर ले सकते हैं फॉर दिस कॉन्टेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर शो, बट लेट्स आप मेरे साथ बने रहिए, आई विल टेक यू ऑफ एयर।
1: श्योर, हम एक ही कॉल ऑन एयर ले सकते हैं फॉर दिस कॉन्टेस्ट।

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
3: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
4: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
5: ब्रेकिंग न्यूज. होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
8: हूँ पारो, घड़ी में हुए 6:43. थोड़ा सा ही वक्त बचा है और बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मैंने बात करी अबाउट द सिबलिंग क्वेश्चन. और कुछ लोगों से मैं नहीं बात कर पाई बिकॉज वक्त बहुत कम है. एंड आई नो बहुत सारी कहानियां हैं, प्यारी प्यारी कहानियां हैं. काश वक्त होता पारो तो सुनती रहती. एंड विद दैट, धर्मिष्ठा जी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू शेयर द स्टोरी अबाउट हर सिस्टर. तो आपके डिटेल्स मैंने ले लिए हैं और

0: बताना चाहती हूँ, आई फॉरवर्डेड इट एंड दे आर यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ इट्स अ कॉन्टेस्ट, सो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज दैट आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस, एंड अगर आप जीतेंगे तो आपके डिटेल्स पहुंच गई हैं, आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग तरह का गिव अवे है जो चौकटा का गिव अवे है और रक्षाबंधन का गिव अवे है. बट विद दैट, ट्रेडिशनल जो हमारे गिव अवेज होते हैं वो भी अभी आने वाला है, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं IANT के बारे में. सेलिब्रेट इंडियाज 80th इंडिपेंडेंस डे एट IANT's Anand Bazaar 2026 on Saturday, August 15th from 2 PM onwards at the Co-America Center, Frisco. सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज कंप्लीटली इनडोर्स, मतलब गर्मी का टेंशन नहीं है, एंड इट्स फ्री फॉर एवरीवन. एंजॉय ऑथेंटिक इंडियन फूड, ग्रैंड परेड, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, लाइव म्यूजिक, शॉपिंग. ब्रिंग योर फैमिली, ब्रिंग योर फ्रेंड्स एंड बी पार्ट ऑफ नॉर्थ टेक्सास बिगेस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. दैट्स गोइंग टू बी IANT Anand Bazaar 2026. A very special day is coming up, which is 15th August. Kyunki 80 saal ho gaye hain, 8 decades. What an amazing achievement that has been, and an amazing journey. Jo ye Bharat ki jo journey hai, ye celebrate karenge IANT ki. And hum to karte hi hain. Hum to jab bhi koi news aati hai desh ki, hamari kuch bhi achhi news aati hai, kuch bhi achievement ki baat pata chalti hai, to hum to har baar, mujhe lagta hai, yaad karte है कि कितना हमारे देश ने सहा है. और मैं अभी की बात नहीं कर रही हूं, मैं कई 100 सालों की बातें कर रही हूं, इतनी सारी चीजें सही हैं और उसके बाद भी रेजिलियंस से निकल कर उभर कर आया है, और अब तो खैर बिल्कुल बहुत ही बहुत आगे निकल रहा है, निकलता जाएगा. एंड हमारी दुआएं हैं कि हमारा देश बहुत बहुत आगे जाए और हम उतना ही गर्व महसूस करेंगे.
1: कहीं इस मामले में कुछ खरीद फरोख्त

मतलब ये अच्छा है इसमें, इस गाने में मुझे चीज बड़ी फनी लगती है कि जिसने पहली बार शादी करी उसको पीटो जाके मतलब गलती किसी और के ऊपर लगानी है, गलती आप खुद करते हैं अगर इसमें जो इस गाने का मीनिंग है राइट, शादी करी गलती करी लेकिन अपनी गलती नहीं मानेंगे, जिसने सबसे पहले दुनिया में शादी करी उसको पकड़ो और पीटो। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट और गिव अवे बिकॉज घड़ी में हुआ है 6:53, ये है फुडिस्तान की तरफ से। इफ यू आर लुकिंग फॉर, इसके पहले थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, यस यू कैन ऑलवेज गो टू फनीशा रेडियो की जो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज है एंड कनेक्ट विद अस एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो हमारे गिव अवेज होते हैं या फिर हमारे जो ट्रिविया होते हैं, बहुत सारे चीजें जो इवेंट्स वगैरह, यू कैन गेट दैट। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यानी कि पारो, योर्स ट्रूली, यू कैन कनेक्ट विद प्रिंसेस पारो 27 ऑन इंस्टाग्राम एंड पारो कौशिक ऑन फेसबुक। फिलहाल बता देती हूं आपको फुडिस्तान गिव अवे के बारे में। इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश इंडियन ग्रोसरीज, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश गन्ने का जूस, केटरिंग सर्विसेज एंड इवन मोर अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस, यू नीड टू विजिट फुडिस्तान इन ऑबरी। फुडिस्तान ब्रिंग्स everything they see all in one place, plus they offer a lowest price match guarantee on groceries and free delivery to an order to orders over $30 within 5 miles. Agar aap Fanisha ka naam lenge, hamara naam bahut chalta hai jaise aap jante hain, Fanisha, you can get 10% discount. Ab aapka kya winning isme prize hai? If you win this one lucky winner, main sawal puchungi aur the first person to give the right answer is going to be the lucky winner, that's going to receive a free item from D Vibe restaurant, which is an upscale Indian रेस्टोरेंट लोकेटेड इन इनसाइड फुडिस्तान। तो ये आप जीत सकते हैं उनका एक स्पेशल आइटम। ऑल यू हैव टू डू इज आंसर। थोड़ी देर पहले मैं दृश्यम की बात कर रही थी, बहुत ज्यादा बात करने का मन था मेरा लेकिन वक्त कम होता है हमारे पास इन द इवनिंग दिस शो। तो लेकिन दृश्यम जो है उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसकी ओरिजिनल कहानी मलयालम की है, जैसे आप जानते होंगे कई सारे लोग मलयालम की ओरिजिनल फिल्म है। तो इसकी ओरिजिनल जो कहानी है वो किसने लिखी है? 9723555555 द लकी विनर्स गोइंग टू win from Fudistan ka D Vibe restaurant ka special item 9723555555.

0: बहुत सारी कॉल्स आई हैं मेरे पास एंड द करेक्ट आंसर इज जीतू जोसफ एंड द राइट पर्सन टू गिव द आंसर जिन्होंने सही जवाब दिया दैट इज अभी भी लाइन्स एक्चुअली बज रही हैं दैट इज स्पुर्ति. स्पुर्ति आपको मुबारक हो फूडिस्तान की तरफ से एक स्पेशल डिश. और मैं बस एक मिनट से भी कम बचा है आई विल बी हेरिंग आउट बट आई वॉन्ट टू तो मैं कॉल्स बज रही हैं लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ बिकॉज शो इज एंडिंग में और कॉल्स नहीं ले पाऊंगी. बट थैंक यू सो मच जीतू जोसफ साहब के बारे में ज्यादा नहीं बता पाई बट प्रॉमिस करती हूँ क्योंकि मैं उनके बारे में बात जरूर करना चाहती हूँ. व्हाट एन अमेजिंग वर्क दैट ही हैज डन एंड वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन आई कम बैक ऑन फ्राइडे एट 8 PM. फिलहाल आपको फ्लेवर लाउंज के बारे में बता देती हूँ. फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को इज नाउ सर्विंग इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिलिशियस डिशेज एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स शेफ स्पेशल एंड फ्लेवर्स दैट यू विल कीप गोइंग बैक टू. ऑल दिस फॉर 24.99 पर पर्सन. एंजॉय करिए उनका बफे ऑन फ्राइडे सैटरडे 11 to 3 एंड ऑन संडे 12 to 3 PM. और ये कहां पर है? ये है 5855 प्रेस्टन रोड फ्रिस्को द फ्लेवर लाउंज. गुड फूड गुड मेमोरीज. मिलूंगी आपसे कल. आज पारो सारी.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Jaane wo kaun sa desh jahan tum chale gaye.
7: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर